आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya.
2: Do patte patjhad ke pedon se utre the, phir utne ki chahat mein us sehraon se guzre. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। ज़रा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।

आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया FM 92.6। आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुजफ्फर को महाबत अपनी जिस कदर इसके मुकद्दर में है सब मिल जाए।
1: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ यूसीपी की दुनिया FM 92.6।

0: और हम ही ने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए इसको सजा दिया। और हर शैतान रांदे दरगाह से इसे महफूज कर दिया।
1: इल्ला मन इस्तरक अस्समअ फअत्बअहु शिहाबुन मुबीन।
0: हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो चमकता हुआ अंगारा इसके पीछे लपकता है।

0: उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूं। खुदा ने फरमाया, यहां से निकल जा, तू मर्दूद है। और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी।
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون।
0: उसने कहा कि परवरदिगार मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे।
1: قال فإنك من المنظرين।
0: फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है।
1: إلى يوم الوقت المعلوم।
0: वक्त मुकर्रर यानी कयामत के दिन तक।

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

इसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और बेशुमार दरख्त उगाता है और हर तरह के फल पैदा करता है। गौर करने वालों के लिए इसमें कुदरत खुदा की बड़ी निशानी है।

0: और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगाया, और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं।
1: وَمَا

www.music.edu.ph. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
4: السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ محمود، مخاطب ہوں آپ سے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا سے۔ لسنرز، آج کا ہمارا شو اے آئی کے ایک ایڈوانس اور ریسرچ لیول ٹاپک پر ہے، جو صرف ٹیکنالوجی کا حصہ نہیں بلکہ فیوچر سسٹمز کی بنیاد بھی بن رہا ہے۔ آپ نے چیٹ جی پی ٹی اور جنریٹو اے آئی کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم ایک اور ڈیپ لیئر ایکسپلور کرنے والے ہیں، گراف بیسڈ ٹیکسٹ پروڈکشن یوزنگ سوشل نیٹورک انالیسز۔ سوچئے، اگر لفظوں کو صرف سینٹینسز نہیں بلکہ ایک نیٹورک کی طرح دیکھا جائے، جہاں ہر ورڈ دوسرے ورڈ سے کنیکٹڈ ہو، اور ان کنیکشنز کے ذریعے ہم پریڈکٹ کر سکیں کہ اگلا لفظ کیا ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سوشل میڈیا پر لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے انٹریکشن سے پیٹرنز سمجھ آتے ہیں۔ آج ہم سمجھیں گے کہ یہ اپروچ کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، اور کیسے یہ ٹریڈیشنل اے آئی ماڈل سے مختلف ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر محسن عباس، جو کہ یو سی پی ایف آئی ٹی کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور اس فیلڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں اور گراف بیسڈ ٹیسٹ پریڈکشن پر کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔
5: جی وعلیکم السلام میم۔
4: سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔
5: آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج بلایا، بہت دیر سے خواہش تھی کہ آپ کے چینل پہ آ کے یہاں پہ کچھ بولیں۔ تھینک یو ویری مچ۔
4: سر آپ کی مصروفیت کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتا آ رہا تھا، لیکن شکر ہے کہ اب آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملا آنے کا، بہت شکریہ۔ چلیں سر، وقت ضائع کیے بغیر اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا ریسرچ ٹاپک اصل میں ہے کیا۔
5: جی بہت شکریہ۔ ریسرچ ٹاپک بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ریسرچ ٹاپک ایکچولی کیسے ہم نے اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا۔
4: بالکل،
5: 2017 میں جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی سٹارٹ کی تو اس وقت چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی جیسی بہت ساری جنریٹو ٹیکنالوجیز نہیں موجود تھیں۔ اس وقت جو میرا کام تھا، جو میری ریسرچ تھی، دیٹ واز سملر ٹو وہ والا کام جو کہ ابھی چیٹ جی پی ٹی اور کلاڈ اور جیمنائی سب کچھ کر کے دے رہے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ 2017 سے 2023 تک میں جو کام کر رہا تھا، دیٹ واز ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جو کہ آج کل چیٹ جی پی ٹی اور لارج لینگویج ماڈلز جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک دم 2023 میں مجھے یہ پتا چلا کہ چیٹ جی پی ٹی کے آنے کی وجہ سے یا اے آئی کے لارج لینگویج ماڈلز کے آنے کی وجہ سے اب میرا جو کام ہے اس کی کوئی ایز سچ ورتھ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ریسرچ جو ہے وہ صرف اور صرف تب تک اہم ہوتی ہے جب تک اس کے اوپر بہت سارے لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ سو دین آئی ریئلائزڈ کہ آئی ہیو ٹو شفٹ مائی ٹاپک آف ریسرچ، اینڈ آئی کیم ٹو نو کہ چیٹ جی پی ٹی جیسے ماڈلز یا لارج لینگویج ماڈلز بنانے کے لیے بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت تھی۔ اسی وقت جو میں 2022 میں ایک کورس پڑھا رہا تھا جو کہ تھا سوشل نیٹورک انالیسز کا، تو آئی کیم ٹو نو کہ ہم جو ہے وہ گرافس کے ذریعے کسی نہ کسی طرح ٹیکسٹ کے اگینسٹ پریڈکشنز کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بجائے اس کے کہ بہت زیادہ ایک کمپیوٹیشنلی ریسورس انٹینس ماڈل استعمال کرنے کی بجائے ایک ایسا ماڈل استعمال کرتے ہیں جو کہ کم ریسورسز استعمال کریں، یعنی کہ کم کمپیوٹیشنل پاور استعمال کریں، اور اس کے اگینسٹ ہم پریڈکشن جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں۔ تو تب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ اپنا ریسرچ کا ٹاپک بالکل مختلف کرتے ہیں، اینڈ وی ڈیسائڈیڈ ٹو گو آن وتھ سوشل نیٹورک انالیسز اور کائنڈ آف ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो कि SNA सोशल नेटवर्क एनालिसिस इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करे। तो आपका क्वेश्चन का जो है वो आंसर बहुत लंबा हो गया, एंड आई थिंक द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज के हमने जो है वो टॉपिक ये इसलिए डिसाइड किया क्योंकि चैट GPT ने हमारा जो एक्चुअल मॉडल है वो रिप्लेस कर दिया काइंड ऑफ।
4: अच्छा सर, ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज मॉडल से कैसे डिफरेंट है?
5: मिस ट्रेडिशनल लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं आपके पास, उसमें डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज मॉडल की बात कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे कंपैरिजन जो करूँगा वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ ही करूँगा। सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं ये बनाने के लिए आपको पहले से बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल टेक्स्ट या कोई ऐसे टेक्स्ट की ज़रूरत है जिसकी बेस के ऊपर ये मॉडल्स लर्न करते हैं, अपने आप को सीखते हैं उसकी बेस के ऊपर। हमारा जो काम है उसमें अगर कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं भी मौजूद, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट की बेस के ऊपर हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स वर्ड्स के या सेंटेंसेस के निकालने की कोशिश करते हैं और उस बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या कोई मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप्स में से। तो आई थिंक इसका स्ट्रेट अवे आंसर ये होगा कि जो आपके ट्रेडिशनल या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा या यू रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर दोज मॉडल्स टू रन। हमारे केस के अंदर जो है वो हम इन मॉडल्स को बगैर किसी डेटा के अनसुपरवाइज्ड, एक टेक्निकल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरह भी इसको हम चला सकते हैं। दैट्स द बेसिक।
4: यानी इनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा डेटा रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया एनालिसिस का, सोशल नेटवर्क एनालिसिस का, और आपके जो रिसर्च का टॉपिक है वो भी यही है, तो सर हमारे सुनने वालों को बताएं कि सोशल नेटवर्क एनालिसिस का टेक्स्ट से क्या ताल्लुक है?
5: वेल एक्चुअली सोशल नेटवर्क एनालिसिस इटसेल्फ जो है ना वो डिफरेंट चीजों को आपस में रिलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। टेक्स्ट जो है वो उसका आप समझें कि एक सब एरिया है जिसके ऊपर हम SNA इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि सोशल नेटवर्क एनालिसिस is basically a bigger kind of branch और text prediction जो है वो उसकी umbrella में एक छोटा सा हिस्सा है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मैं आपको इसकी example देना चाहूँगा। For example आपके computers जो है वो अगर एक दूसरे के साथ connected हैं तो उस case के अंदर आपका जो kind of एक network होगा that is a network of computers और वो आपस में जिस तरह communication कर रहे हैं उसके against अगर हम analysis करना start कर दें तो हम kind of social network analysis की techniques इस्तेमाल करते हुए एक graph बनाते हुए computers का interaction आपस में डिटरमिन कर सकते हैं। अब पर्टिकुलरली स्पीकिंग जो सोशल नेटवर्क एनालिसिस है उसका मेजर कंसर्न जो है वो सोशली जो लोग हैं उनसे होता है। तो इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है कि इमेजिन करें कि आप कोई एक सीजन जो है जो ड्रामा है अंग्रेजी वो आप देख रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि उसमें सबसे डोमिनेंट कैरेक्टर या सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो कौन सा है, तो उसमें आप समहाउ जो है वो एक छोटा सा नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और वो नेटवर्क सिंपली ये हो सकता है कि लेट्स से अगर एक कैरेक्टर जो है वो अपीयर हो रहा है किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ तो आप जो है वो समहाउ एक ग्राफ क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए और ये डिटरमिन करने की कोशिश कीजिए कि आपका वो कैरेक्टर कितने बाकी कैरेक्टर्स के साथ एक सीन के अंदर अपीयर हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि एक नेटवर्क जो है वो बढ़ता चला जाएगा और somehow हम डोमिनेंस निकालने के लिए मैथमेटिकली जो है वो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है। अब ये सब कुछ बैक एंड के ऊपर ग्राफ थ्योरी के थ्रू हो रहा है। तो एक्चुअली आप ये समझिए कि ग्राफ थ्योरी के अगेंस्ट एक सब फील्ड इज सोशल नेटवर्क एनालिसिस और सोशल नेटवर्क एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए हम उसके अंडर जो है वो उसी की टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए हम काइंड ऑफ जो है वो टेक्स्ट प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो इसका रिलेशनशिप एज सच डायरेक्टली बताने की बजाय आप ये समझिए कि एक बिगर अम्ब्रेला की एक सब फील्ड जो है वो काइंड ऑफ जो है वो हमने उसमें से पकड़ी है।
4: बिल्कुल। अच्छा सर, क्या ये अप्रोच मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट के लिए भी काम करती है या कर सकती है?
5: जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। और एक्चुअली काइंड ऑफ अगेन जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि 2023 के बाद हमने कुछ ऐसा करके दिखाना था जो कि काइंड ऑफ एग्जैक्टली वो चीज भी ना हो जो कि ऑलरेडी हुई है। सो फॉर एग्जांपल ये जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, ऑलरेडी ऐसे मॉडल्स बने हुए हैं जिसके अंदर टेक्स्ट प्रिडिक्शन यूजिंग ग्राफ्स या यूजिंग सोशल नेटवर्क एनालिसिस की टेक्निक्स जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर जो है वो काम हो रहा था। सो यस, इसको मल्टीलिंगुअल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये काम सबसे पहले जिसके अंदर काइंड ऑफ टेक्स्ट प्रिडिक्शन जैसी चीज़ यूजिंग ग्राफ्स यूजिंग सोशल नेटवर्क एनालिसिस जो है वो सबसे पहले हुआ था टेक्स्ट रैंक एक एल्गोरिदम था उसके थ्रू. सो अब ऑलरेडी अगर वो काम जो है वो रैंकिंग दे रहा है या इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ वर्ड्स जो है वो एक टेक्स्ट में से निकाल के दे रहा है तो फिर हमारा तो कोई ऐसा नई नोवेलिटी तो कुछ भी नहीं थी उसके अंदर. तो हमने इसको फिर मल्टीलिंगुअल करने की कोशिश की और एक्चुअली जो मेरी रिसर्च है उसके अंदर हमने पेपर्स सबसे पहले डच लैंग्वेज जो नेदरलैंड्स में बोली जाती है नेदरलैंड्स और बेल्जियम में और उसके बाद हमने जर्मन लैंग्वेज क्योंकि मेरे सुपरवाइजर जो है वो हाइडलबर्ग के अंदर उस वक्त उनकी पोस्टिंग थी तो हमने जर्मन स्टूडेंट्स के साथ उसके ऊपर सेम काइंड ऑफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट प्रिडिक्शन करने की कोशिश की और सबसे एंड पे हमने यूसीपी के स्टूडेंट्स को लेते हुए एक काइंड ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी कोई चीज बनाने की कोशिश की जो कि उसी एक मेथड को इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी के ऊपर काम कर रहा था. सो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि यस वी कैन मेक इट मल्टीलिंगुअल एज वेल.
4: अच्छा सर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है अगर आप कुछ सिंपल एग्जांपल के साथ बता सके हमारे सुनने वालों को.
5: इसका सबसे प्रैक्टिकल यूज पर्टिकुलरली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हो सकता है फीडबैक जो कि आप यूजर्स को दे सकते हैं. सो मैम आप भी टीचर हैं और इमेजिन करें कि आप अंग्रेजी लैंग्वेज जो है वो बच्चों को पढ़ा रही हैं और आपने बच्चों को एक टास्क दे दिया है क्लास में कि आप फलां टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखिए. अब ऐसे की मार्किंग की मैंने पर्टिकुलरली इसलिए एग्जांपल ली क्योंकि एक ऐसे को मार्क करना चाहिए वो 200 वर्ड्स का ही क्यों नहीं है उसके अंदर आपको ठीक ठाक टाइम रिक्वायर्ड है. हम बजाय इसके कि सब कुछ मैनुअली करें हम ये काम कर सकते हैं कि एक ऐसा मॉडल ट्रेन करें जो कि फॉर्मेटिव फीडबैक यानी कि आपका ऐसे पकड़ के उसमें से ऑटोमेटिकली जो है वो रिलेशनशिप्स निकाल के ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करे कि आपके ऐसे की क्वालिटी कितनी अच्छी या कितनी बुरी है. तो इसका बहुत प्रैक्टिकल एक यूजेज हो सकता है इन फीडबैक सिस्टम्स जिसके अंदर आप स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज के एसेज के ऊपर फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द यूजेज जहाँ पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं.
4: लिसनर्स वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का. हमारे साथ रहें सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ग्राफ बेस्ड फीडबैक सिस्टम की, और जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज मॉडल से किस तरह डिफरेंट है, और इसके अंदर सोशल नेटवर्क एनालिसिस किस तरह काम करता है, और हमने देखा कि ये मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट के ऊपर भी काम कर सकता है या नहीं करता। हमने इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखी कि ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज हो रहा है, और हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस अहम गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सर मोहसिन अब्बास साहब। जी सर, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी तफसील से हमें एक्सप्लेन किया, आपने अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में बताया। अच्छा सर, हमारे सुनने वालों को बताएं कि इस रिसर्च का एकेडेमिया में क्या रोल है।
2: देखिए, इस रिसर्च का एकेडेमिया में सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो ये है कि इसके ऊपर काम बहुत कम हुआ है, और इसके ऊपर एकेडेमिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है, जो कि एक एकेडेमिया की शाख है, दैट इज रिसर्च, उसके ऊपर हम मजीद काम कर सकते हैं। और आई थिंक इस वक्त सबसे ज्यादा काम हम इसमें कर सकते हैं उर्दू लैंग्वेज पे।
1: बिल्कुल, क्योंकि उस पर अभी तक काम नहीं हुआ।
2: जी, उर्दू लैंग्वेज में सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है अभी, दैट इज द वे उर्दू इज रिटन। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने काम इंग्लिश पे भी किया, जर्मन पे भी किया, डच पे भी किया, और इन तीनों लैंग्वेजेस की जो खास बात है वो ये है कि दे आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दूसरा ये कि इनको हम बड़ी आसानी से जो अपने कैरेक्टर्स हैं ABC तकरीबन सबके मिलते जुलते ही हैं, विद स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसके ऊपर हम बड़ी आसानी से जो है वो काम कर सकते हैं। उर्दू का सबसे बड़ा मसला एक तो ये है कि द वे इट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और दूसरा उसके अंदर मसला है द पोजिशन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि आप अगर मेरे नाम में मोहसिन में देखें तो मीम जो है वो स्टार्ट में आ रहा है, और उसकी जो शेप है दैट इज डिफरेंट। और अगर आप बात करें लेट से असलम की, जो कि एक और नाम है, उसके अंदर मीम एंड पे आ रहा है और उसमें मीम की शेप जो है वो डिफरेंट है। तो आई थिंक एक तो ये काम जिसके अंदर हम वर्ड्स को बेसिकली सेपरेट करना जो है वो सम हाउ काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन के लिए जो है वो ग्राफ बेस्ड सिस्टम्स इस्तेमाल करें, और दूसरा अगर मेरे काम को ही आगे लेके चलना है तो हम बजाय इसके कि जर्मेनिक लैंग्वेजेस जो कि अंग्रेजी, डच और जर्मन लैंग्वेज है, उसकी बजाय ये जो इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस हैं जो कि जिसका स्क्रिप्ट, जिसका रस्मुल खत जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, इसके ऊपर हम काम

0: कि व्हाट इज नॉलेज ग्राफ। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो ये कहूंगा कि जो मेरा काम है दैट इज एक्चुअली नॉलेज ग्राफ। तो नॉलेज ग्राफ जिस तरह काम करता है एग्जैक्टली उसी तरह ही हमने काम किया है। सो नॉलेज ग्राफ के अंदर द ओनली डिफरेंस इज कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। सो अगर आप ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन का रिलेशनशिप, उसके अंदर ह्यूमंस कुड बी ऑब्जेक्ट्स। अगर आप कंप्यूटर्स की बात करें तो उसके अंदर कंप्यूटर्स कुड बी ऑब्जेक्ट्स, उनका आपस में रिलेशनशिप। अगर आप लेट से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर लेट से ये जो दो माइक्रोफोन हमारे सामने लगे हुए हैं ये आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू समथिंग जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, दैट कुड बी वन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। मेरे केस के अंदर जो ये रिलेशनशिप है वो वर्ड्स और सेंटेंसेस का है आपस में। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि एक्चुअली जो मेरा काम है दैट इज नॉलेज ग्राफ्स।
1: अच्छा सर, क्या ये अप्रोच जनरेटिव एआई को कम्पीट करती है या कॉम्प्लीमेंट, आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
0: मैम, इस स्टेज के ऊपर आई थिंक जनरेटिव एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को हम कम्पीट नहीं कर सकते। आई थिंक ये सिर्फ उसको असिस्ट कर सकती है और सिर्फ उन जगहों पे जहाँ पे एफिशिएंसी या कंप्यूटेशनल कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू है। अब देखिए, ये जो चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स हैं इनमें सबसे बड़ा मसला तो नहीं कहना चाहिए, काइंड ऑफ इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है दैट इज इट्स कंप्यूटेशनल कॉस्ट। सो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स आपको चाहिए, बहुत ज्यादा जीपीयूज चाहिए जिसके थ्रू कंप्यूटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा डेटा रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू आप ये सारा काम कर रहे हैं। हम तो ऐसे काइंड ऑफ नॉलेज ग्राफ्स या ऐसे सोशल नेटवर्क्स बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन नहीं रिक्वायर्ड। सो मेरा अपना जो काम है वो मैंने एक कोर i5 2012 मॉडल के कंप्यूटर के ऊपर किया था जो कि काइंड ऑफ फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर रहा था। आई थिंक तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक दे कैन नॉट रिप्लेस देम एट ऑल।
1: अच्छा सर, अगर किसी का इंटरेस्ट हो ग्राफ थ्योरी की तरफ तो आपके ख्याल में क्या प्रीरिक्विजिट जो है वो रिक्वायर्ड है इस फील्ड में काम करने के लिए?
0: देखिए, ग्राफ थ्योरी में आने के लिए सबसे बड़ा प्रीरिक्विजिट मैथमेटिक्स के साथ लव होना बहुत जरूरी है। आपको मैथमेटिक्स बहुत डीप लेवल पे आनी चाहिए,
1: यानी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए।
0: इंटरेस्ट से ज्यादा आपको ना सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए बल्कि आपका उठना बैठना जो है वो मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आपको मैथमेटिक्स का आइडिया नहीं होगा तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकेंगे विदाउट एनी डेटा। तो इस फील्ड में आने के लिए आई थिंक मैथमेटिक्स इज द बिगेस्ट प्रीरिक्विजिट, उसके बगैर बहुत मुश्किल होगा। रीजन उसकी ये है कि हम बेसिक लेवल के ऊपर कैलकुलस और मल्टीवेरिएट कैलकुलस जैसी चीजें तो जरूर पढ़ लेते हैं, लेकिन समवन डज नॉट नो कि इसके आगे भी मजीद चीजें आपको पढ़नी चाहिए, तब कहीं जाके आप ग्राफ थ्योरी में आ सकते हैं। सो आई थिंक मैथमेटिक्स इज द बिगेस्ट प्रीरिक्विजिट दैट यू रिक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड।
1: अच्छा सर, जो स्टूडेंट एआई में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए आपका एडवाइस क्या होगी?
0: हमारे स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में या एआई डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं उनके लिए कंपैरेटिवली आसानी ये है कि उनको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स आती है।
1: बिल्कुल।
0: और हमारा एक कोर्स यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स है, उसके अंदर हम ग्राफ का इंट्रोडक्शन दे देते हैं और उसके बाद जो पाँचवें सेमेस्टर में ये बच्चे आके अपना कोर्स पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का, उसमें भी ग्राफ का एक मेजर पोर्शन है।
1: बिल्कुल।
0: तो वहाँ पे बेसिक्स ऑफ ग्राफ उनको ऑलरेडी पता होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे ये है हमारे स्टूडेंट्स के लिए एआई के फील्ड में आने के लिए कि उनको कोडिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, और अगर वो सब फील्ड्स में जाना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ग्राफ थ्योरी जैसी किसी चीज़ में, तो वो डेटा स्ट्रक्चर और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के कोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें।
1: बिल्कुल। लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, हमारे साथ रहें, सुनते रहें।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ग्राफ बेस्ड फीडबैक सिस्टम के बारे में, और हमारे साथ इस अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सर मोहसिन अब्बास साहब, जिन्होंने बड़ी तफसील से हमें बताया कि उनका रिसर्च टॉपिक क्या है और वो किस तरह ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस मॉडल से डिफरेंट है, और इसमें सोशल नेटवर्क एनालिसिस की जो बात हो रही है वो उसका क्या ताल्लुक बनता है, और फिर हमने देखा कि ये मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट के ऊपर भी काम कर रहा है या नहीं, हमने इसकी प्रैक्टिकल यूज देखा, और फिर हमें सर ने बताया बड़ी तफसील से कि जनरेटिव एआई से ये कॉम्पीट कर रहा है या कॉम्प्लीमेंट करता है उसे, एकेडेमिया में इसका क्या रोल है, और हमने देखा कि नॉलेज ग्राफ्स में ये यूज हो सकती है रिसर्च या नहीं। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी सर, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि इस फील्ड के लिए प्रीरिक्विजिट क्या होते हैं, और फिर आपने बताया कि जो स्टूडेंट एआई में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए आपने बड़ी अच्छी और बड़ी तफसील से एडवाइस दी। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि फ्यूचर में ग्राफ बेस्ड मॉडल्स ज्यादा कॉमन हो सकते हैं या नहीं।
2: जी बिल्कुल, फ्यूचर में ग्राफ बेस्ड मॉडल कॉमन हो सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह होगी कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी और बहुत सारा डेटा ना मौजूद होना। जिस तरह हम बात कर रहे थे उर्दू लैंग्वेज की, अब उर्दू के अंदर डेटा इकट्ठा करना सबसे बड़ा मसला है। तो ऐसे मॉडल्स के लिए, ऐसी लैंग्वेजेस के लिए हम ग्राफ बेस्ड मॉडल्स को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पे कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा मसला है। सो फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने आपको एग्जांपल दी कि क्लास के अंदर अंग्रेजी का ऐसे आप अगर उसके ऊपर फीडबैक देना चाहते हैं वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी एग्जांपल को हम इमेजिन करते हैं गाँव में, और एक गाँव के अंदर बच्चे जो है वो उर्दू का ऐसे लिख रहे हैं, उर्दू के ऊपर मजमून लिख रहे हैं। अब वहाँ पे आप GPUs या बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स तो नहीं लेके जा सकते, और आपके पास प्रॉबेबली वहाँ पे एक सेटअप होगा एक छोटे से कंप्यूटर के ऊपर जो चल रहा है उसके ऊपर। आई थिंक इन मॉडल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ऑफ कोर्स ये कमर्शियल एप्लीकेशंस के साथ कम्पीट, जिस तरह की हमने पहले जिक्र किया, उसके साथ नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी जगहों के ऊपर जहाँ पे लैंग्वेज का एक इशू है और वहाँ पे बच्चों को आप कुछ सिखाना चाह रहे हैं, वहाँ पे प्रॉबेबली इनकी बहुत ज़्यादा अफादियत हो सकती है।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, ग्राफ बेस्ड टेक्स्ट मॉडल बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या सामने आया?
2: सबसे बड़ा चैलेंज डेटा क्लीनिंग का आया। आपका जो डेटा किसी ने लिखा है उसके अंदर हो सकता है कि उसने जो कुछ भी काम किया है वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से या अपने बोलचाल के हिसाब से किया है। सो सबसे बड़ा जो है वो इशू आया डेटा की क्लीनिंग का, यानी कि डेटा को के अंदर से ये जो स्टॉप वर्ड्स, इसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर, ऐसे वर्ड्स जिसका ग्राफ की ओवरऑल प्रिडिक्शन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं है। जैसे कि बोलते हुए जो हम स्टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं इसी तरह जो ना वो लिखते हुए कुछ लोग जो है ना वो एज सून एज, या जिस तरह मैं बोलते हुए पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, स्पेसिफिकली स्पेशली, इन वर्ड्स का एक्चुअल आपके टॉपिक के साथ कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। ये काइंड ऑफ फिलर्स हैं जो कि आपने अपने टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे बड़ा इशू इन इस डेटा की क्लीनिंग का है, और दूसरा मेजर इशू जो हमें यहाँ पे आता है दैट इज़ एक ऐसा टॉपिक जो कि बिल्कुल अनरिलेटेड है। अब जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, इमेजिन कीजिए कि एक बच्चे को आपने कहा है कि आप इलामा इकबाल के ऊपर ऐसे लिखें। अब मेरा जो ग्राफ है वो बेसिकली टेक्स्ट की क्वालिटी बेस्ड ऑन सेंटेंसेस जो है वो निकालेगा, ना कि कॉन्टेक्स्ट को देखेगा। अगर एक बच्चा जो है वो कायदे आजम के ऊपर ऐसे लिख देता है ना कि इलामा इकबाल के ऊपर लिखे, तो अब उसके अंदर एक ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा, और उसके अंदर सेंटेंसेस की आपस में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी होगी, और काइंड ऑफ एक ऐसा ग्राफ निकलेगा जो कि बहुत अच्छा है, और वो आपको शायद फीडबैक बहुत अच्छा प्रोवाइड करे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट ना होने की वजह से, यानी कि हमने तो उसको ये बताया ही नहीं कि इलामा इकबाल के ऊपर अगर ऐसे लिखना है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आई थिंक एक काइंड ऑफ जो मसला हमें आया वो ये था कि हमें थोड़ा सा डेटा इसको जरूर प्रोवाइड करना पड़ा जिसके अंदर हम काइंड ऑफ एक जो कॉन्टेक्स्ट है वो इसको प्रोवाइड करें, और यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड के साथ थोड़ा सा सुपरवाइज्ड का कॉन्सेप्ट भी आया, जहाँ पे हम कम अज कम टॉपिक जिससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड है या नहीं उसको हम किसी ना किसी तरह डिटर्मिन करें। इसका बाय द वे एक और हल भी है, वो ये कि जब 50 लोग ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें 50 के 50 गलत टॉपिक के ऊपर नहीं लिखेंगे, तो आप कॉमन टर्मिनोलॉजीज निकाल के ये देख सकते हैं कि एक्चुअली सब एक कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर सबके सब गलत डायरेक्शन में काम करेंगे या सबके सब रैंडमली किसी टॉपिक के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दें तो ये मॉडल्स फेल हो जाते हैं।
1: जैसे सर अभी आपने जिक्र किया कि आपने एक ऐसे लिखवाया एक बच्चे को या पूरी क्लास को, आपने कहा कि इलाम इकबाल के ऊपर लिखें, लेकिन किसी एक बच्चे ने टॉपिक ही चेंज कर लिया। अब जो प्रेडिक्शन है वो तो काम कर रही है, वो तो उसी तरह उसको कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो प्रेडिक्ट करेगी, तो सर क्या हम इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं?
2: इन सर्टन केसेस नो, नहीं कर सकते। इसीलिए हम ऐसे मॉडल्स को फीडबैक के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप, फीडबैक ठीक भी हो सकता है और फीडबैक गलत भी हो सकता है, लेकिन फीडबैक एब्सोल्यूट कभी भी नहीं होता। आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि आपने जो काम किया वो गलत है, या आप ये नहीं कहेंगे आपने जो काम किया वो ठीक है। आप उसको फीडबैक देंगे कि आपने जो काम किया वो ये है, और अगर आप इसके अंदर ये फलां चीज चेंज कर लें तो हो सकता है कि आपका ऐसे बेहतर हो जाए। अब ये इस तरह फीडबैक देने से अब यूजर की मर्जी है, यानी कि उस बच्चे की मर्जी है, वो खुद सोच के देखेगा कि क्या उसने इसको सही करना है या नहीं। तो नथिंग शुड बी एब्सोल्यूट इन सच केसेस, एंड द वेरी रीजन इज बिल्कुल जैसे आपने बताया कि इसकी काइंड ऑफ रिलायबिलिटी जो है वो थोड़ी सी वेवर्ड जो है वो होगी, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सच सिस्टम्स कि इसके अंदर जो है वो जिस तरह चैट जीपीटी आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में बता देता है कि ये ठीक है या गलत है, और हम सोचे समझे बगैर जो है वो अपना काम करते हैं, ऐसे केसेस के अंदर कम अज कम आप सोच के करेंगे जो कुछ भी करेंगे, एंड हैविंग अ काइंड ऑफ अनरिलायबल सिस्टम इज अ ब्यूटी इन इटसेल्फ, क्योंकि इस केस के अंदर आप फिर खुद से जो है वो सोच के अपना जो ओवरऑल रिजल्ट है उसके ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे।
1: ये सारा काम जो है वो सिस्टम के ऊपर नहीं है या मशीन नहीं कर रही, हम खुद भी अपना साथ इनपुट दे रहे हैं।
2: ऑफ कोर्स आप फीडबैक जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उस फीडबैक को मानना या ना मानना आपकी मर्जी और आपकी मंशा पे है। अगर आपको नहीं पसंद आप उसके फीडबैक को ना मानिए।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो लिमिटेड है, सर इस रिसर्च का फ्यूचर क्या है या आपके ख्याल में क्या एडवांसमेंट हो सकती है इसमें?
2: इसका फ्यूचर जो है वो हाइब्रिड मॉडल्स के साथ ही है, जिसके अंदर हम एज एन एलाइड फील्ड इसको लेके चलें या एज एलाइड सिस्टम इसको लेके चलें, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं वहाँ पे आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इस्तेमाल हों, और जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है वहाँ पे ये वाले मॉडल्स इस्तेमाल हों, ताकि आप एक काइंड ऑफ हाइब्रिड अप्रोच के साथ चल सकें। और जिस तरह अगेन आपने जिक्र किया कि रिलायबिलिटी जो है वो इसमें आप इसके ऊपर कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, इसीलिए हाइब्रिड is the best solution, that's the future for this particular area.
1: Listeners, हमारे प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं। हम अपने ऑनरेबल गेस्ट सर मोहसिन अब्बास का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे सुनने वालों को इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक आसान अल्फाज में समझाया।
2: जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदू किया आज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: लिसनर्स, आज के प्रोग्राम से हमें ये समझ आया कि AI सिर्फ लफ्जों को जोड़कर सेंटेंसेस नहीं बनाती, बल्कि उनके दरमियान मौजूद कनेक्शंस को भी समझने की सलाहियत हासिल कर रही है। ग्राफ बेस्ड टेक्स्ट प्रेडिक्शन और सोशल नेटवर्क एनालिसिस जैसे अप्रोचेस हमें ये दिखाते हैं कि लैंग्वेजेस एक सिंपल लाइन नहीं बल्कि एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जहाँ हर लफ्ज दूसरे से जुदा होता है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ज्यादा स्मार्ट, एक्सप्लेनेबल और इफेक्टिव AI सिस्टम्स की बुनियाद बन सकती है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी वक्त इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke din mein.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: एक नई सोच
3: नई सोच
4: एक नई पहचान
3: पहचान
2: एक नई लगन
3: नई लगन
4: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
4: जब मिलती है लगन
2: मेहनत
4: कामयाबी और खुलूस
2: तो बनती है
4: यूसीपी की दुनिया
3: यूसीपी की दुनिया
2: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6
4: सुनते रहिए
5: अस्सलाम वालेकुम सामईन प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ और मंजिल में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके अचीव किया होता है और वो अपनी लर्निंग जो है अपना प्रोसेस जो है और अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं और हमारी जो यूथ है और हमारे जो लिसनर्स हैं वो उनसे सीखते हैं और एक ऐसा सिलसिला है जिससे हम एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने कुछ भी अचीव किया उनका प्रोसेस जानें ताकि आप उससे रिलेट कर सकें और इसी मकसद के लिए हम बुलाते हैं मुख्तलिफ शख्सियात को आज हमारे साथ मौजूद है मायरा फारूक मानिका और बड़ी डाइवर्स किस्म की शख्सियत हैं इन्होंने इकोनॉमिक्स में तालीम हासिल की है साइकोलॉजी में माइनर है इसके अलावा मेमोरी जो आपका और मेरा बहुत बड़ा इशू है और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा इशू होता है उसके हवाले से इनका काम है ये बताती हैं कि चीज़ें किस तरह से याद रखनी हैं और ख़ास तौर पर एग्ज़ाम की चीज़ें जो कि बोरिंग भी होती हैं और हम उसे इतना याद रखना भी नहीं चाहते और कोशिश करते हैं कि सेमेस्टर के बाद उसे बुला दें तो इस तरह की जो मेमोरी है उसको किस तरह से रखा जा सकता है और कैसे वो प्रैक्टिसेस क्या हैं जिससे हम कम से कम एग्ज़ाम तक जो है वो मेमोरी रिटेन कर सकें इस पर भी बात होगी और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मौजू पर जिसे अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो आखरत का जो बाद मरने के जो दोबारा ज़िंदा होना है जिसको कुरान ने बार बार साइट किया है और एक मोमिनों में और कुफार में एक डिबेट जंग ये भी होती थी कि वो कहते थे कि जब कोई मर जाएगा तो ज़िंदा कैसे हो सकता है तो इसके ऊपर इन्होंने कुरानिक कॉन्टेक्स्ट में एक किताब भी लिखी है तो ये सारी बातें हम इनसे पूछने जा रहे हैं मायरा कैसी हैं आप वेलकम टू एफ एम 92.6
6: अस्सलामुअलैकुम थैंक यू फॉर हैविंग मी मैं अल्हम्दुलिल्लाह
5: वेलकम सलाम कैसा लग रहा है मायरा आपको ये एक यूनिवर्सिटी के रेडियो स्टेशन आके
6: मैं काफी मतलब सरप्राइज हुई हूँ पॉजिटिवली सरप्राइज मैंने आपसे पूछा भी था कि ये मतलब यूनिवर्सिटी का है रेडियो क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा किसी यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो हो और वो भी मतलब या तो अगर ये कोई फिल्म मेकिंग की हो तो फिर बंदा कहे अच्छा चलो फिर या म्यूजिक की यूनिवर्सिटी हो लेकिन वो ऐसा भी नहीं है तो मैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा और एक्चुअली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगी मैं पहली बार आई हूँ जो पार्किंग है बड़ी इन्होंने अच्छी लाइक प्लानिंग से लग रहा है बनाई हुई है नहीं बनाई हुई
5: बिल्कुल ऐसे ही है और पार्किंग का तो आपको पता है कि सीवियर क्राइसिस है हमारे यहाँ पे अच्छा मायरा थोड़ा सा बताएं कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर जब स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो और ख़ास तौर पे जो थोड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो ये इकोनॉमिक्स का तो हमें जब स्कूल में पढ़े होते हैं तो पता भी नहीं होता कोई माइनर सा एक सब्जेक्ट होता है तो ये इकोनॉमिक्स तक का सफर कैसे तय किया आपने
6: ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है मेरा ये मेरे यूजुअली जो डिसीजंस होते थे ना हमेशा से अभी भी वो जो अम्मा अबू कह रहे हैं बस वही कर लो वो एंड पे हमेशा वही अगर मैं कहूँ मैंने लेफ्ट जाना है वो कह नहीं तुम राइट जाओ तो एवेंचुअली लेफ्ट में जाके मैं कहती थी वैसे राइट ही जाना चाहिए था तो अब इकोनॉमिक्स में इस तरह हुआ कि फॉर सम रीजन ओ लेवल्स में मेरा जनाब इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आया ए स्टार आया फिर जनाब ए लेवल्स में भी ए स्टार ही था तो आप जब यूनिवर्सिटी गए तो उधर आप पहले साल में आपने कोर्सेज करने होते हैं, फिर आप डिसाइड करते हो पहले सेमेस्टर के बाद कि आपने मेजर क्या रखना है अपना। तो इकोनॉमिक्स आप तब भी रख सकते हो अगर आपका जीपीए अच्छा हो, 3.2 से ऊपर हो तो फिर आप रख सकते हो, वरना फिर आप पॉलिटिक्स रखो या एंथ्रोपोलॉजी रखो या इस तरह करके। तो मुझे उस वक्त तक इतना तो पता नहीं था कि मुझे क्या शौक है, मुझे पढ़ाई से वैसे ही माजरत के साथ काफी नफरत थी बचपन से ही, तो कभी शौक नहीं था मुझे पढ़ाई का, तो बस था कि करनी है, वो जो होता ना पढ़ गई अब करनी तो है ही, तो किसी में भी कर लो, शौक तो किसी का भी नहीं है। तो अब वो जब जीपीए आया तो वो 3.2 से ऊपर था, तो अब सोच रहे थे क्या रखना है, पॉलिटिकल साइंस रखें, इकोनॉमिक्स रखें, एंथ्रो रखें। तो अम्मी को मेरी हमेशा से ना इकोनॉमिक्स में बड़ी वो नहीं होती थी कि मेरी नहीं इकोनॉमिक्स रखो, वो बड़ी खुश होंगी ना कि इकोनॉमिक्स है और वो भी रख रहा है जो। तो मैं कहा चलो इसमें
7: घर की इकोनॉमिक्स अम्मी चलाती
6: है, नहीं नहीं वो तो अम्मी चलाते हैं।
7: अच्छा, नहीं प्रैक्टिकली तो अम्मी चला रही होती है,
6: वो तो प्रैक्टिकली तो
7: फाइनेंसर होते
6: हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स तो अब्बू चला रहे ना वैसे हर चीज। तो वो उनको
7: खजाना तो खुद कमाता नहीं है, वो चलाता है, तो घर की वजीरे खाना खजाना
6: नहीं, वो तो वही है ना, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है। तो उन्होंने उनको उनकी बड़ी खुशी थी कि भाई इकोनॉमिक्स अगर मेरी कर लेना बेटी, उनका एक वो जो प्राउडनेस वाली चीज होती, तो उनको खुश करने के लिए मैंने कहा भाई जो भी रखूंगी, मुझे कौन सा कोई इंटरनल खुशी किसी में मिलनी है, तो चलो इकोनॉमिक्स ही रख लो। तो वो इस तरह मैंने इकोनॉमिक्स कर लिया। लेकिन थर्ड ईयर में जाके ना मुझे साइकोलॉजी ए लेवल्स में थी, मुझे पसंद थी, लेकिन वहाँ पे ना मेजर नहीं था साइकोलॉजी का, एंड मैं जब कोर्स रखना भी कोई चाहती थी वैसे ही माइनर था, माइनर भी हमारे सेकंड ईयर में इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था, तो कोर्स रखना भी चाहती थी, कोई क्लैश हो जाता था नहीं रखती थी। तो फाइनली थर्ड ईयर में जाके फिर साइकोलॉजी के ना दो कोर्सेज मैंने रख लिए, दो या तीन थे शायद, जिसमें से दो एक ऐसे सर के साथ थे, सबने कहा बेटा तुम्हारा जो जीपीए अल्लाह मैंने तुम्हें दे ही दिया था ना, अब तो तुम गई, क्योंकि वो तो कभी नहीं पास करेंगे, वो कर बहुत मुश्किल से ग्रेड देते हैं, और सारे उनसे बड़े वो थे। तो मैंने कहा अल्लाह ये मैंने क्या रख ली, मेरी तो बड़ी जान निकली थी, और पहले क्विज में मैं फेल भी हो गई थी सिर्फ इसी में कि मैं क्या करूंगी क्या करूंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कोर्सेज में उन्होंने मुझे एज दिए, और जो तीसरा था उसमें मेरा ए था, मेरा साइकोलॉजी का मेरा 4 ही जीपीए रहा है माइनर में। तो वो उसमें मुझे पता चला अच्छा नहीं, मुझे साइकोलॉजी बड़ी पसंद है, मतलब वो बस मजा आया था, या शायद मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, इकोनॉमिक्स में इतना वो मजा नहीं आया, मतलब मजा तो लर्निंग तो हुई ऑब्वियसली, लेकिन वो जो एक अटैचमेंट होती वो मेरी ज्यादा साइकोलॉजी से हुई थी। इकोनॉमिक्स में सफर यही था कि बेसिकली अम्मा को खुश करना था
7: जी। चले अगर आप अपना कोई पर्सनल ऐसे परसूट नहीं था तो फिर अम्मा की खुशी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है।
6: ये मेरे लिए था हिस्सा हमेशा से, जब ए लेवल्स भी ओ लेवल्स में भी मुझे हमेशा होता था मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मतलब क्या फायदा क्या है इसका पढ़ाई का, वो एक क्वेश्चन मेरा ख्याल हर इंसान को ही आता है। तो मेरा एक कोई ना कहीं अपने अपने आप को अपने एक रीजन देना होता था, तो मेरे लिए हमेशा से एक चीज मेरे अंदर जो फीड की गई थी ना कि बस अल्लाह मियां खुश, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को खुश करना है और अल्लाह को नाराज नहीं करना, बस ये पता होती थी बात। तो जब पढ़ाई कर रहे हैं मैं क्या बिजनेस पढ़ के, मैं कहती थी अल्लाह मियां कल मर गई, अल्लाह मियां मुझसे पूछेंगे तुम क्या कर रही थी, मैं कहूंगी जी मैं बिजनेस पढ़ रही थी, अल्लाह मियां कहेंगे तो क्या किया तुमने, क्या मैं जवाब दूंगी। तो हर चीज को वो इंटेंशन कहते हैं ना, आपने लिंक करनी है। तो मैं कहती थी मुझे तो इससे कोई नहीं मिल रही, ना कोई फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि दिमाग इतना ही था। तो मेरी इंटेंशन हमेशा यही होती थी अच्छा इसे अम्मा भी खुश होंगे, अम्मा भी खुश होंगे तो माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह मियाँ खुश होंगे। तो मेरी हमेशा से इंटेंशन अल्लाह मियाँ इवेंचुअली अल्लाह मियाँ को खुश करने की होती थी पढ़ाई की, शायद इसलिए नंबर भी आ जाते थे।
7: बड़ी जो है ना मासूम सी और स्ट्रेट सी अप्रोच है,
6: इसलिए नंबर भी आ जाते थे, नंबर भी आ जाते थे और फिर पढ़ाई हो भी जाती थी बैठ के। ये भी नहीं होता था, कईयों से नहीं होती पढ़ाई, लेकिन जब ये इंटेंशन हो ना कि अच्छा इस चाहे मैं केमिस्ट्री पढ़ने से भी मुझे पता है अल्लाह मियाँ खुश होंगे, क्यों, क्योंकि अम्मा खुश होंगी, तो वो मोटिवेशन आ जाती थी फिर।
7: बिल्कुल ठीक है। अच्छा मायरा आपने बेल्जियम से भी पॉजिटिव साइकोलॉजी में डिग्री की है या
6: नहीं? बेल्जियम से मैंने एजुकेशनल रिसर्च की।
7: अच्छा, एजुकेशनल रिसर्च
6: है और पॉजिटिव साइकोलॉजी की मैंने यूपेन से स्पेशलाइजेशन की है।
7: सही, तो उसका एक्सपीरियंस बताएं, बेल्जियम का और यहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ना क्या डिफरेंस था उसमें?
6: अच्छा, एक तो ये कि लम्स में भी काफी स्ट्रिक्टनेस होती है रिसर्च से रिलेटेड। तो जब बेल्जियम गए तो सबने कहा कि ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गुजारा नहीं होता लोगों का, कि बड़ी टफ है जी और अगर आपने नहीं किया तो निकल जाएंगे और ये वो। जो
7: के बाद बेल्जियम चूज करने की वजह थी या बस ऐसे ही रैंडम?
6: नहीं नहीं, उसकी बड़ी खास वजूहत थी बेल्जियम की। एक तो ये कि इंग्लैंड नहीं था वो क्योंकि हर कोई इंग्लैंड चला जाता है, तो मुझे था वहां नहीं जाना। और दूसरा ये कि मुझे वैसे चॉकलेट्स की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब मेरा लोग यहाँ पे चाय शाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, मैं नहीं पीती कभी भी, नहीं पास भी नहीं गई, लेकिन मैं चॉकलेट्स खाती हूँ, मेरी कैफीन वहां से मिलती है मुझे, तो बेल्जियम की चॉकलेट्स बड़ी मशहूर है। लेकिन उनसे जो सबसे बड़ा वजह है ना वहाँ की, वो है अब्बू के एक फ्रेंड सईद अंकल,
7: सही,
6: वो बचपन से मतलब फैमिली फ्रेंड है, मतलब उस तरह है, तो उनकी बीवी और वो दोनों मतलब हमारी फैमिली फ्रेंड्स की तरह है, तो उन पे अम्मा अबू को बड़ा अंधा विश्वास जैसे कहते हैं ना वो था, तो वो वहां पे रहते थे, तो उन्होंने भेजना तो मुझे वहीं था जहाँ पे कोई जानने वाला हो, वरना उन्होंने मुझे बाहर बिल्कुल नहीं भेजना था, तो उनकी मेहरबानी क्योंकि वो थे वहाँ पे, उनको पता है कि ख्याल भी बड़ा करते हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा अच्छा तुम बेल्जियम जा सकती हो।
7: और बेल्जियम में पढ़ने का एक्सपीरियंस
6: बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ पे जो शहर था वो लूवन था, बहुत छोटा शहर था, 8 किलोमीटर में उसका पूरा वो था, उसका क्या कहते हैं उसको, डायमीटर उसका 8 किलोमीटर का था, तो सोच लें कितना छोटा होगा, और लेकिन वो सारा जो शहर था वो यूनिवर्सिटी ही थी, समझ रहे हैं, तो समझ लें आप एक शहर में रह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ जा रहे हैं स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, और मतलब और सारे पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पे क्राइम का भी कोई इतना इशू नहीं था, मतलब आप इजीली हर जगह जा रहे हो आ रहे हो, और फिर साथ जहाँ मैं रह रही थी मेरे पीछे यूरोप की सबसे बड़ा ओपन बार था, कि मतलब स्ट्रीट थी वहाँ पे सिर्फ बार्स ही बार्स होते थे, तो रात को लेट अगर आप मतलब कुछ नहीं करने को, तो मैं वहां जाके ना लोगों की सिर्फ हरकतें देखने लग जाती थी जो लोग करते थे ड्रंक होकर, तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा अजीब था, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं आप लोगों को देखते ना ड्रंक, वहां पे लोगों को मैं देखती थी कि ये सब बड़े पढ़े लिखे हैं सारे, और इधर ये एक मतलब जानवर फलाना मतलब कुत्ता बन के फिर रहा है, एक वहां उल्टियां कर रहा है, एक उल्टा खड़ा होके छलांगे मार रहा है,
7: और ये हम जो यहाँ से जाते हैं वहाँ पे उनकी तहजीब से भी मुतासिर होते हैं, तो फिर उनकी बात तहजीबी से भी बड़ा एक
6: नहीं, और बड़ी डेंजरस चीज है ये, मतलब वो इस, आप मैं अगर चाहती मैं किसी को भी आराम से उसके सारे वॉलेट खरीद लेके मैं अपने कमरे में, मेरी पूरी कमाई हो जानी थी अगर मैं चाहती तो किसी को भी, और मैं तो ये हैरान थी कि इतना डेंजरस है ये कि लोग अपनी होश खो के सड़कों पे फिर रहे आराम से, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन खैर अल्लाह मियां ने उनकी भी हिफाजत किसी अपने तरीके से की हुई थी, लेकिन मैं ये देखती थी कि ये दुनिया चला रहे हैं, मतलब ये यूरोप है जी रिसर्च का एपिटोम है, तो ये दुनिया चला रहे हैं, तो रात को इनकी हालत देखो सारों की क्या हो जाती, वैसे ही वो देख के हंसी भी आती थी, और जाहिर है ऐसी चीजें देख के फिर आपको रियलाइज होता है कि हमारे मुल्क में ठीक है, मतलब हम इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम इतने भी गए गुजरे नहीं है, और मुझे असल में पाकिस्तान की वर्थ वहाँ जाके ही पता चली थी,
7: बाहर जाके ही वैसे पाकिस्तान की वर्थ मिलती है। मायरा, हमने अपने जो लिसनर्स हैं उनको म्यूजिक से एंटरटेन भी करना है, तो अभी हम लेने जा रहे हैं म्यूजिक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो हमने जिस तरह इंट्रो में कहा था कि हमने लोगों को बताना है कि उन्होंने चीजें याद किस तरह से रखनी है, और आपने हमारे साथ टिप्स शेयर करनी है, तो लिसनर कहीं ना जाइएगा, आपका एक बहुत बड़ा मसला ब्रेक के बाद हल होने वाला है।

0: सिस्टम, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने ऑर्डर में याद करनी है कि पहले ये आती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो जी ऑर्डर में कैसे याद रहे, ठीक है। तो ये सिस्टम अगर आप लगाए ना तो कोई भी चीज़ आपको ऑर्डर में रहेगी, चाहे वो पांच हो, छः हो, सात हो, दस हो, पंद्रह हो, बीस हो, हजार, हजार भी वैसे तो लोग कर लेते हैं, आप सौ भी कर लें तो हम उसी में बड़े खुश हो जाएंगे। तो वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है। वो ऐसे वर्क करता है कि जी अगर आपने कोई एक चीज़ याद करनी है ना, अब मेमोरी की एक फाउंडेशन होती है बेसिकली, अगर कोई भी चीज़ आपने याद करनी है उसकी एक फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है, वो है एसोसिएशन
1: जी,
0: ठीक है। अगर टू लर्न समथिंग न्यू यू हैव टू एसोसिएट इट विद समथिंग यू ऑलरेडी नो, किसी ऐसी चीज़ के साथ उसे लिंक करते हो, एसोसिएट करते हो, उसका ताल्लुक बनाते हो जिससे आपको ऑलरेडी ऑलरेडी आप जिस चीज को जानते हो, फिर ही वो नई मेमोरी बनती है। तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है, ये आपने अपने दिमाग में भी रखनी है थ्रू आउट दिस, ये ठीक है। और दूसरी चीज जो मैं जल्दी से बता दूंगी कि आप कि हमारा ब्रेन जो है ना वो उसकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है
1: जी,
0: वो आप बता सकते हैं वैसे क्या होगी ब्रेन की प्राइमरी लैंग्वेज, मतलब प्राइमरी जो उसकी मतलब मदर टंग कह लें ब्रेन की, क्या होगी आपके
1: जो जो हमारी मदर टंग होती है,
0: क्या क्या है आप?
1: पंजाबी।
0: पंजाबी, अच्छा। अब मैं एक वर्ड बोलूंगी, ठीक है, आपने वो वर्ड सुन के मुझे बताना है आपके दिमाग में क्या आता है और फौरन से आपने बताना है, ठीक है। ब्लू हॉर्स क्या आता है, जल्दी से बताएं।
1: घोड़ा है,
0: ठीक है, किस तरह का है, थोड़ा एक्सप्लेन करें।
1: एक घोड़ा है, उसके जरा थोड़ा सा हटके घोड़ा है, और उसके जो है ना बाल थोड़े से लंबे हैं, वो जो नेक हेयर्स हैं थोड़े से लंबे हैं, वो पतला है और बड़ा खूबसूरत है,
0: ठीक है। और कलर उसका क्या है, नॉर्मल घोड़ा है जैसे नॉर्मल होते हैं, अच्छा ठीक है। और लाइक रियल लाइफ घोड़ा है कि कार्टून का घोड़ा है?
1: नहीं, रियल लाइफ है,
0: ठीक है। अब आपके जब मैंने कहा ब्लू हॉर्स, तो आपके दिमाग में कहीं ब्लू हॉर्स लिखा हुआ नजर आया?
1: नहीं।
0: आपको पिक्चर आई है ना?
1: पिक्चर आई है।
0: तो आपके दिमाग की प्राइमरी जो जुबान है ना वो क्या है, क्या हुई फिर जो images. आपके ब्रेन ने आपको दिखाया, वो आपकी इमेजेस है। हाँ, आप उसको लिख के भी उसे कह सकते हैं कि जी ब्लू हॉर्स है, वो कर लेगा याद सब, लेकिन उसकी प्राइमरी जुबान जो है ना वो है जो हमें सबसे जल्दी समझ आती है। अगर मैं एक लेक्चर आपको पंजाबी में दूं वर्सेस वही लेक्चर एक दफा मैं दूंगी, कितना समझ आएगा आपको, वर्सेस वही लेक्चर मैं आपको फ्रेंच में दूं, चाहे सौ दफा भी दे दूं, उसमें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो एक दफा के पंजाबी वाले से भी कम होगी।
1: या इवन इंग्लिश हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम ज्यादातर उर्दू और समझ भी आ रही होती है पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी, लेकिन उर्दू फिर भी ज्यादा हमें डाइजेस्ट होती है,
0: क्योंकि वो हमारी ज्यादा लाइक सेकंड नहीं तो थर्ड नहीं तो सेकंड लैंग्वेज तो है ना, या फर्स्ट हो। तो इसी तरह ब्रेन की आपकी इमेजेस है वो फॉरन, वो आपको, अब मैं आपको जरा इमेजिन करें एक ब्लू कलर का घोड़ा, असल में इमेजिन करें तो आपके माइंड में एक ब्लू घोड़े की पिक्चर आ जाएगी। हालांकि जिंदगी में कभी ब्लू घोड़ा देखा आपने?
1: नहीं।
0: लेकिन आपका दिमाग आपको एक
1: घोड़े को ब्लू कर दिया मैंने,
0: हाँ, तो दिमाग आपको एक सेकंड में दिखा देगा, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही वो है। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, एसोसिएशन मेमोरी के लिए, और अगर तेजी से याद करना है तो इमेजेस, ठीक है, तो हर चीज की इमेज होनी चाहिए। ये दो बेसिक रूल्स अभी मैं आपको मोटे मोटे बता रही हूँ। अब आते हैं लिंक सिस्टम पर। वो इस तरह के अगर आपने समझे 10 पॉइंट्स याद करने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि जी मैंने आपकी बीवी ने कहा है जी जरा जाके ना बाजार से ये चीजें ले आओ, 10 चीजें, तो आपको वो लिस्ट याद करनी है। फॉर एग्जांपल, तो पहली चीज उसने कहा जी आपने डबल रोटी लेके आनी है, दूसरी चीज उसने कहा जी आपने अंडे लेके आने, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जी डबल रोटी की इमेज बनानी है दिमाग में जो कि इजीली बन जाएगी, और फिर आपने एक अंडे की इमेज बनानी है। अब लिंक सिस्टम में क्या है कि जी आपने रबर रोटी और अंडे की वो मिला देना है, लिंक कर देना है, और एक ऐसी इमेज बनानी है या वीडियो बनानी है, मूवी, जो बहुत ही अजीब हो वो लिंक असोस, क्योंकि हम इमेज बना लेते हैं, हम लिंक बड़ा वीक बना देते हैं इन पॉइंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का, जिसकी वजह से हम अगर डबल रोटी सोच भी लेंगे ना तो वो उसका लिंक हमें भूल जाएगा, क्योंकि वो बड़ा वीक होता है। तो आपने वो उनका स्ट्रांग बनाना है, तो डबल रोटी और अंडे के बीच में अगर आपने एक इमेज बनानी हो अपने माइंड में या पेंट करनी हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप बताएं कोई अजीब सी बताएं इमेज।
1: एक सैंडविच है, उसमें से आधा अंडा निकला हुआ और आधा उसके अंदर है।
0: अच्छा, अब ये एक इमेज है तो सही, लेकिन ये अजीब नहीं है, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया जो मैंने रखा हुआ है ना वो ये होता है कि ऐसी इमेज होनी चाहिए जो रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो अब वो इमेज ऐसी होनी चाहिए जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो ही ना कभी, तो अब वो ये हो सकती है कि मैं सोचूं अच्छा डबल रोटी और अंडा लाना है, तो डबल रोटी है वो जो है ना वो अंडों के पीछे भाग रही है, अंडे भाग रहे हैं मुर्गी की तरह, और वो डबल रोटी पीछे भाग रही है कि मैंने ना तुम्हें पकड़ना है, ये एक इमेज बन गई मेरे दिमाग में, और ये बहुत अजीब सी है क्योंकि रियल लाइफ में कभी भी नहीं डबल रोटी भागती हुई नजर आएगी मुझे अंडों के पीछे। ये पहली होगी। अब लिंक सिस्टम में कहेगा, अब तीसरे पे आए, तीसरी चीज क्या हो सकती है भाई आप बताएं।
1: सो

0: सोप,
1: सोप। अब आपने अंडों को और सोप को लिंक करना है आपने, ठीक है भाई, ऐसी इमेज बनानी है जिसमें अंडे और सोप का एसोसिएशन हो और वो इमेज होनी चाहिए या मूवी होनी चाहिए। तो अब आप बनाएं अंडे और सोप के बीच में कोई अजीब सी एसोसिएशन।
0: अंडे डबल रोटी जो है वो भाग रही है अंडों के पीछे, और सोप उसके ऊपर ऐसे है जैसे क्लाउड होता है, वो क्लाउड ऊपर अच्छा। चल रहा है दोनों के ऊपर।
1: अच्छा चलो, ये आपने उसको भी बीच में लिंक कर दिया, आपने स्टोरी टेलिंग कर दी, ये भी टेक्निक होती है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग भी होती है। और अगर आप नहीं कर रहे तो आप अलग से भी इमेज बना सकते हैं जिसमें बिल्कुल अलग हो कि जी फॉर एग्जांपल आपने इमेजिन किया कि कोई भी किसी इंसान को, बीवी कोई कर ले जिसने आपको काय के ले गए, वो साबुन की जगह ना अंडे से हाथ धो रही है अपने ना, तो वो साबुन की जगह वो एक इमेज आ गई क्योंकि साबुन की जगह अंडा पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल। लेकिन हम आपकी वाली लेंगे क्योंकि वो आपके माइंड में पहले आई थी, जो पहले आती है ना चीज वो यूज करनी चाहिए, वो जरा तगड़ी होती है। तो आपने अच्छा इमेजिन किया कि जी अंडे भाग रहे हैं और उनके ऊपर सोप जो है वो बादल बन
0: फ्लोट कर रहा है, जिस तरह
1: बादल बन के जा रहा है, और बारिश भी कोई कर रहा है, तो वो भी आप इमेजिन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सोप को जो थर्ड है उसको अगले फोर्थ से एक और इमेज बनानी है, उसमें सोप और वो होगा, ठीक है। अब फोर्थ जल्दी से कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बॉटल, ठीक है। अब वो आप इमेजिन एक कोई इमेज सोच लें जी, आपकी क्लास में सारे बच्चे हैं, उनके आप उन्होंने कहा जी हम पानी पी रहे हैं, आपने कहा पी लो, तो सब बॉटल की जगह ना सोप निकाल के पीने लग गए। अब ये थोड़ी अजीब चीज है, सोप कैसे पीता है। अब वो आपने अपने माइंड को फोर्स करना है कि इसको इमेजिन करो कि कैसे सारे बच्चे बैठे होंगे, और इसके लिए ना आपने आंखें बंद करनी है। ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट होती है सबको कि एटलीस्ट शुरू में आंखें बंद रखें, क्योंकि उससे आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, फोकस बढ़ जाता है, और विजुलाइजेशन करने में हेल्प आपकी होती है। एक दफा आदत हो जाएगी फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। अब लिंक सिस्टम क्या करता है, अब मैं आपसे कहूंगी ना चलें अभी बताएं लिस्ट क्या क्या लेके आनी है एग्जांपल। तो पहली चीज जो थी वो क्या थी, वो यूजुअली हमें याद रहती है प्राइमरी और रिसेंसी इफेक्ट के लिए। तो पहली क्या थी जी, डबल रोटी, दूसरी क्या थी
0: अंडे,
1: ठीक है, तीसरी क्या थी
0: सोप,
1: क्योंकि अंडों के अच्छा, और सोप के साथ चौथी क्या थी
0: बॉटल।
1: अब मैं इसी तरह 15 और चीजें भी बता दूंगी, आप बॉटल के साथ कुछ और जोड़ दें, ठीक है, वही कुछ और जो है वो आप सिक्स्थ पॉइंट के साथ जोड़ दें, सिक्स्थ सेवन्थ, हर चीज का ना दो लिंक्स बन जो, इसलिए लिंक सिस्टम बोलते हैं। एक चीज का एक अगली से लिंक्ड है, एक पिछली से लिंक्ड है, सिर्फ जो जिसका नहीं होता है एक आगे वो आखिरी चीज है और एक पहली चीज है। पहली चीज का आपने को आप कर सकते हैं, आप लोकेशन से लिंक कर सकते हैं जहां पे आपको ऑर्डर दिया गया है कि जी लेके आओ, या जिसने ऑर्डर दिया आप उससे भी कर सकते हैं लिंक, ठीक है। अब इसमें सारी गेम सिर्फ दो चीजों की है, एक इमेज होनी चाहिए जिसको आप गौर से देख सकें, जिसके लिए मैंने आपको कहा आंखें बंद करें और जितनी सेंसेस उसमें यूज कर सकते हैं उस इमेज को देखते हुए, कि मतलब उसको देखें भी, उसमें सुने भी कि लोग क्या कह रहे हैं, अगर फील कर सकते हैं इमेजिनेशन में कैसे, जितनी सेंसेस इनकॉर्पोरेट करेंगे उतनी वो इमेज अच्छी तरह इमेजिनेशन बैठेगी। आंखें बंद करें वो पहले बता दिया, और तीसरा जितनी डिटेल आप देख सकते हैं, जब आप बच्चों को देख रहे हैं कि वो सोप निकाल के पी रहे हैं बॉटल, तो वो कैसी बॉटल है, उसके ऊपर कोई डिजाइन बना हुआ है, कोई सोप लिखा हुआ है क्या है, जितनी डिटेल डालेंगे वो आपका माइंड उसको याद रखेगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऐसी होनी चाहिए कि वो अजीबो गरीब हो, कि आप परसों भी मैं आपसे पूछू ना कि बताएं भाई वो डबल रोटी के बाद क्या था, तो आप कहें अच्छा वो अंडों के पीछे भाग रही थी, उसके बाद क्या था, फिर आपको कह नहीं अच्छा वो ऊपर कुछ चल तो रहा था उसके, क्या था अच्छा हाँ साबुन था, और फिर साबुन के बाद, वो होनी इतनी अजीब कि आपको वो ऑटोमेटिकली याद रहेगी, ठीक है। तो
0: दिमाग के झुरमट में गुम ना हो जाए,
1: हाँ,
0: वो
1: तो वो अजीबो गरीबियत
0: रखे,
1: अजीबो गरीब होनी चाहिए, उसको फनी बना लें, ड्रोना बना लें, खून खराबा डाल दें अंदर, वो मेरा बड़ा फेवरेट है, जितना खून खराबा डालेंगे ना अंदर उतना ही आप लोगों के रिएक्शन सुनेंगे उसमें, और वो आपको याद रहेगा।
0: चले वन तो होगी टेक्निक लिंक और एसोसिएशन, दूसरी टेक्निक क्या है, ब्रेक का टाइम हो रहा है, हम जल्दी दूसरी टेक्निक के बाद,
1: दूसरी टेक्निक ना मैं दूसरी में कराऊंगी, और वो ये होगा, वो मैं आपको चार टूल्स बताऊंगी दैट विल फोर्स यू टू क्रिएट क्रेजी इमेजिनेशंस, क्रेजी एसोसिएशंस, जिसमें हम कहते हैं ना कि यार वो एसोसिएशन हम बोर सी बना लेंगे वो अगले दिन हमें भूल जाएगी। तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जो आप यूज करें कि आपकी एसोसिएशन दो चीजों के बीच में जो बनेगी वो ना चाहते हुए भी इतनी अजीब बनेगी कि आपको याद रहेगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगी
0: इंशाल्लाह। सामीन उम्मीद है कि आपने जो पहली टेक्निक है, मैंने तो इसको सीखा है, लर्न किया, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको प्रैक्टिस भी करूं। और मेरा ये मसला है कि जब मेरी वाइफ मुझे कोई चीज़ कहती है तो मैं हमेशा उसमें से दो तीन चीज़ें भूल जाता हूं, और मैं फिर उसका आर्ग्यूमेंट ये बिल्ड करता हूं कि मैंने कुछ 70-80% अकम्प्लिश कर ली और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो लेने जा रहे हैं म्यूजिक ब्रेक, और ब्रेक पर जब हम वापस आएंगे ब्रेक से, तो अदर टेक्निक्स भी माहिरा से पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा। Oh,

0: मेन प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेजबान अली अशरफ और आपके अपने एफएम 92.6 पर आप इसे सुनते हैं। इसके अलावा इसे आप एंड्रॉयड ऐप और जो आईओएस है उसके ऊपर भी सुन सकते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं मायरा फारूक और ट्रेनर हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे काम है। अभी हम इनसे पूछ रहे थे, ऑथर भी हैं, इनसे पूछ रहे थे कि मेमोरी कैसे, चीज़ों को मेमोराइज किया जा सकता है और मेमोरी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए हमने जो ब्रेक से पहले एक टेक्निक सीखी थी वो थी लिंक और एसोसिएशन। मायरा, और कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हम एम्प्लॉय कर सकते हैं?
1: सो बेसिकली इसी टेक्निक को अगर बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमारी एसोसिएशन यूजुअली वीक होती है, तो अगर हमारी एसोसिएशन बेहतर हो जाए ना तो हमारी काफी मेमोरी के मसले हल हो जाए। तो एसोसिएशन बेहतर करने के लिए अपनी जो भी आपने इमेजेस बनाई हुई उनका आपस में लिंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं चार टूल्स आपके साथ जल्दी से शेयर करूंगी, ताकि कोई भी ऐसी कोई भी चाहे ना बैठे बैठे एक अजीबोगरीब एसोसिएशन वो बना सकते हैं। तो पहला टूल जो है, जो मेरा फेवरेट टूल है, जो सबसे ज्यादा मैं यूज करती हूँ, वो है सब्स्टिट्यूशन टूल। ठीक है, तो जिन दो पॉइंट्स को आपने लिंक करना है ना, आप एक को देखें कि वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, उधर से उसको निकाल दें और दूसरे वाले को डाल दें। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जो सोप वाला मैंने एक आपको बताया था, सोप और एग का, कि सोप यूजली कहाँ पाया जाता है, सिंक के पास, और वहां से मैंने सोप निकाला और उसकी जगह एग डाल दिया। अब अगर सोप को मैंने जिस भी चीज के साथ लिंक करना हो, वो चीज जब इधर आएगी ना, वो इमेज ऑटोमेटिकली अजीब ही बनेगी। और वो नहीं तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है, जहां एग्स कहाँ पाए जाते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है, अगर आपकी बुक शेल्फ आती है या मुर्गियों का वो जो होता है पूरा वो आता है, या तवा आता है, जिधर जो लोकेशन आपके माइंड में आती है वहां पे अंडा, वहां से अंडा निकाल के उसकी जगह सोप डाल दें, तो आपको जब आप इमेज में देखेंगे कि है ये क्या, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये अंडे का लिंक सोप के साथ है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट टूल। दूसरा टूल है जी, आप दोनों के बीच में ना कोई एक्शन डालें, दोनों जो आपने इमेजेस बनाई हुई है ना उनके बीच में कोई ऐसा एक्शन डालें जो मतलब नॉर्मल ना हो। तो ज्यादातर अगर इनएनिमेट चीज है तो उनको तो आप उसमें फाइटिंग करा दें, उनकी उनकी रेस लगवा दें, कुछ भी एनीथिंग, मतलब आपस में खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी, तो एनी एक्शन विल, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना एक्शन को याद रखता है, और मगर ऐसा एक्शन जो मतलब ज्यादा आपको अटेंशन ग्रैबिंग भी हो। ठीक है, फिर तीसरा, या इस ना रेडियो में बैठे हैं कोई दो चीजें तो वो भी आपको याद रहेगी। तीसरा टूल जो है वो है इंक्रीज नंबर। ठीक है, अब हमारा ब्रेन अगर कोई एक चीज बहुत ज्यादा तादाद में देखता है ना तो वो इमेज उसको अच्छी तरह याद रहती है। ठीक है, तो अगर दो चीजों को आपने आपस में लिंक करना है तो उनमें से एक की या दोनों की तादाद बढ़ा दें, लाइक मिलियंस एंड ट्रिलियंस में कर दें। ठीक है, तो अगर समझे हमारा जो लास्ट आइटम था वो बॉटल था, तो उसके बाद अगर फर्ज करें बीवी ने कहा चेयर भी लेके आनी है, ठीक है, तो आप इन दोनों में से एक की तादाद आपने बढ़ानी है, तो आप इमेजिन करें कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ चेयर्स आए, अब वो कहाँ आपको नजर आएंगी, जहां भी है स्पेस में या जमीन में वो है, और वो बॉटल के साथ कुछ कर रही है, कोई एक्शन डाल दी, या बॉटल, या वहां पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बॉटल्स भी है और आपस में उनकी या तो जंग हो रही हो, या सारी चेयर्स जो है वो बॉटल्स को पी रही हैं, या जो भी है बॉटल के ऊपर चढ़ रही है, या बॉटल के अंदर से निकल रही है बहुत ज्यादा चेयर्स, तादाद बढ़ा देनी है। तो जब वो देखेगा ना ब्रेन, वो कहेगा अच्छा भाई ये तो बड़ी अजीब चीज है, तो वो ऑटोमेटिकली उसी वक्त स्टोर हो जाएगी दिमाग में।
0: बिल्कुल।
1: और लास्ट वाला जो है टूल वो है साइज चेंज कर दें, किसी एक चीज को बहुत ही बड़ा कर दें कि आसमान तक वो टच हो रही है। ठीक है, और अगर वो चीज ऑलरेडी बड़ी है तो उसको छोटा कर दें। सो फॉर एग्जांपल अगर सूरज बहुत बड़ा है तो छोटा सूरज इमेजिन कर लें कि कमरे में इधर सूरज लगा है, यू नो, तो उसके नॉर्मल साइज से चेंज कर,
0: टेबल पे पड़ा हुआ छोटा,
1: हाँ, और वाकई उतनी वो हीट आ रही है उसमें, दिन रात वहीं से ही हो रहा है, तो इतना करें कि जो उसका नॉर्मल साइज है ना उससे या तो बहुत बड़ा कर दें, और अगर वो एक्चुअली बड़ा है तो उसे छोटा कर दें कि देखना वाला क्या यार ये क्या अजीब है, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा हो।
0: बिल्कुल ठीक है, तो मायरा ये सारी टेक्निक्स तो आपने बता दी। हमारे बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम टेक्स्ट में याद रखना होता है, जिस तरह एसेज होते हैं या कोई लिटरेचर की चीजें हैं, वो एक कंटिन्यूस टेक्स्ट होता है, तो उसको हम किस तरह से, अब कितनी चीजें हम रिलेट करेंगे, क्या क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या टेक्निक है?
1: जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन का आंसर याद करना है, उसके 12 पॉइंट है, तो 12 पॉइंट्स में हर पॉइंट की इमेज बना लेंगे लिखे में लेके, फर्ज करें 12 पैराग्राफ्स हैं एक ही आंसर के, तो वो किस तरह करेंगे, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है ना, उस पैराग्राफ को आपने एक फ्रेज वर्ड मेमोरी वर्ड बनाना है, ठीक है, टू वर्ड्स या थ्री वर्ड्स के अंदर ना एक फ्रेज बना देना है कि अगर उस पैराग्राफ में अगर येलो बॉटल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो आपने उसका नाम लिख देना येलो बॉटल्स, ठीक है, और उसकी फिर एक इमेज बना देनी है येलो बॉटल्स की. अगर आपने एक स्टेप हेड जाना है तो उस पैराग्राफ में जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो अक्सर कोई भी नहीं याद रखता, उनकी जब आप इमेज बनाएंगे तो उस येलो बॉटल वाली इमेज में ही कहीं वो डाल दें, ठीक है. फॉर एग्जांपल येलो बॉटल्स के साथ अगर एलिफेंट्स की बात हो रही है छोटी सी, तो इमेजिन कर लें बॉटल के ऊपर एलिफेंट बना हुआ है या एक एलिफेंट बॉटल पी रहा है, इस तरह की डिटेल आपने उस फ्रेज वर्ड में डाल दी, वो एक इमेज आपकी बन गई. फिर दूसरे पैराग्राफ में आपने यही प्रोसेस करना है, और दूसरे पैराग्राफ की जो इमेज है उसको फिर आपने फर्स्ट से लिंक सिस्टम की तरह लिंक कर देना है, और इसी तरह फिर थर्ड पैराग्राफ की जो इमेज होगी उसको सेकंड से लिंक कर देना है. इस तरह करते करते आपको पूरा वो याद हो जाएगा. और इसका एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे देना चाहूंगी, मतलब किसी ने जो फीडबैक दिया था वो मेरी कजन ही है. वो स्कूल में ना वो जो बच्चे होते हैं ना जो बस दुआओं से ही चल रहे होते हैं, वो ऐसी ही थी. तो उसे भी मैंने कराई तो मेरे पास आई एक दिन, उसको इंटरेस्ट हुआ बड़ा, उसने कहा ये मेरा सवाल है मुझे बताएं, एक बड़ा लंबा सवाल था. तो हमने यही वाली टेक्निक उस पर लगा दी. एग्जाम था उसका कोई दो महीने बाद मेरा ख्याल है, उसके बाद उसने उसको कभी हाथ नहीं लगाया. उसने कहा ऐसा टॉपिक आता ही नहीं कभी, लेकिन मैं वैसे ही वो महीने बाद एग्जाम था, अब वो आ गया टॉपिक वही वाला, बिल्कुल वही सवाल आ गया. तो वो ये कहती है कि मैं ना, मैंने कहा ओहो ये तो वो है, कहती मेरे माइंड में पक्का था कि मुझे तो याद ही नहीं आएगा जो मैंने किया हुआ था, कहती लेकिन ना बीच में एक पॉइंट मुझे याद आ गया. एक तो आ ही जाता है अगर 10 पॉइंट है, तो एक कहती मेरे माइंड में ना मुझे याद आया. तो कहती हुआ ये को एक की वजह से, क्योंकि लिंक बने हुए थे ना, वो पिछले भी याद आ गए और अगले भी याद, और कहती वो आ ही जाए. और मैं थी कि मैं जल्दी से लिख लूं कहीं मैं भूल ना जाऊं, हालांकि उसी वक्त याद आ रहे हैं, एग्जाम में उसको टेंशन शुरू होगी सारे याद आ रहे हैं मैं कहां लिखूं. तो वो माशाल्लाह उसने बड़े अच्छे नंबरों से फिर वो पास किया. तो जब उसने मुझे ये बताया ना, तो फिर मुझे हुआ कि नहीं भाई ये जो
0: tested,
1: है ना
0: टेस्टेड हो गई.
1: वो तो मैंने अपनी बहन पे भी टेस्ट करी थी शुरू में, फिर अब तो माशाल्लाह मतलब काफी स्टूडेंट्स और काफी लोगों से फीडबैक मिला था, लेकिन ये वन ऑफ द फर्स्ट फीडबैक्स ना आपको याद रहता है.
0: बिल्कुल ठीक.
1: तो ऐसे था.
0: अच्छा मायरा, प्रोग्राम में अब हम लेने जा रहे हैं म्यूजिक ब्रेक, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो एक किताब जो कि बड़ा एक मौलवियाना किस्म का टॉपिक है कि मरने के बाद हम उठ पाएंगे या नहीं, कुरान इसके बारे में क्या कहता है, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. सामीन हमारे साथ रहिएगा, हम लेने जा रहे हैं एक म्यूजिक ब्रेक.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन,
2: यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया,
2: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
4: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। मैं आपकी मेज़बान तहज़ीन अली आपको प्रोग्राम नखले अदब में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत पॉजिटिव गुजरा होगा, आपने कुछ नया किया होगा, और अगर कहीं पे नेगेटिविटी आई भी होगी तो आपने उसको पॉजिटिव तरीके से ही हल किया होगा। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर बात करनी है वो ज़रा हट के है। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से मुतल्लिक, उनके मसाइल और कैसे वो बेहतर हो सकते हैं। और इसी सिलसिले में हमने आज जिनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है, मोहम्मद वलीद खान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वलीद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। मुझे अंदाज़ा है कि कितनी टफ रूटीन है और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट आर यू डूइंग एंड अदर स्टफ।
5: बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो शोबाए सहाफत से है, और जो है वो मैं काफ़ी अरसे से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। 2017 में मैंने आगाज़ किया था, और उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स से मोहब्बत की वजह से, स्पोर्ट्स मैनशिप होने की वजह से और स्पोर्ट्स मैन होने की वजह से जो है मैंने इस फील्ड का इंतखाब किया कि मुझे सहाफत में जाना चाहिए। तो फिर सहाफत चलती रही और उसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी साथ अटैच होती गईं, और प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान चला गया, प्रोडक्शन भी की और खूब की पाकिस्तान के लिए। तो अब जो है वो आजकल जो है वो प्रोडक्शन की तरफ भी रुझान है और सहाफत की जिम्मेदारियां भी निभाई जा रही हैं।
4: वलीद, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि इस वक्त हमारी सहाफत में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इस वक्त क्या सबसे बड़े मसाइल हैं?
5: बेसिकली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है वो शायद बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत आसान है। आजकल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को हम लोगों ने वन साइडेड जर्नलिज्म कर दिया है कि क्रिकेट जिसको आती है, क्रिकेट के जिसको दो चार खिलाड़ियों का पता है वो खुद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहने लग पड़ा है। लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होना जो है वो एक बड़े एजाज की बात है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को कवर करना होता है, इंटरनेशनल गेम्स को कवर करना होता है। जैसे हमारे खिलाड़ी अपने मुल्क के सफीर होते हैं, इसी तरह से हम जो हैं वो भी उन खिलाड़ियों को पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये कि आप किसी खिलाड़ी को पोर्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आगे बात होती है, पाकिस्तान का इमेज होता है। तो उस इमेज को भी देखते हुए पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है उसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो है वो गेम्स में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो क्रिकेट देख के, क्रिकेट पढ़ के और क्रिकेट को समझ के सहाफत में आए हैं। तो ये जो है खेलों से ताल्लुक जो है एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का, ये बहुत जरूरी है। जब तक एक जर्नलिस्ट का खेलों में इंटरेस्ट नहीं होगा वो उस तरह से सहाफत कर नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि एक सहाफी का काम होता है कि खबर देना, तो खबर जो है वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, खबर ढूंढनी पड़ती है। और खासकर बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं जिनको हमें रोकना पड़ता है कि इसमें पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको जो है वो उनका इमेज है एक चीज, तो हमें उस चीज़ को बड़ी जिम्मेदारी से जो है वो निभाना होता है, उस खबर को भी आगे आवाम तक पहुंचाना होता है। आजकल आपने मसाइल की बात की, तो सहाफत में ओवरऑल बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सहाफत में जो है वो कुछ इदारों की तरफ से भी मसाइल हैं, कुछ हकूमती नुमाइंदे उनकी तरफ से भी मसाइल हैं, और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि सहाफत में गलबा पा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को मसाइल एज सच इस तरह से हैं कि बहुत से सहाफ़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके सहाफत की जिम्मेदारियां निभाते हैं उन पर पाबंदियां आजकल आयद करना शुरू कर दी गई हैं, उनको जो है वो मैचेस कवर करने से रोक दिया गया है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला आजकल सहाफ़ियों को तो यही दरपेश है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाबंदियाँ लग रही हैं उनका सामना कर रहे हैं और उनके लिए मुज़ाहमत भी कर रहे हैं।
4: آپ نے بات کی تھی کہ اسپورٹس صحافت کے لیے ضروری ہے کہ صحافت پڑھی جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسپورٹس جرنلزم کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن یا اسپورٹس میں باقاعدہ تعلیم لے کے آئیں؟
5: بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اس میں کہ کیا کھیلوں میں ان کا انٹرسٹ, ان کو کھلاڑی بھی ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے کھلاڑی ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کو ایز اے جرنلسٹ بھی جو ہے اس چیز کو سیکھنا چاہیے. ہاں اگر آپ کھلاڑی ہوں گے تو وہ بہت ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ کو رولز پتا ہوں گے گیم کے, آپ کو پتا ہوگا کہ اتنے آؤٹ ہیں, اتنی بال سائڈز ہیں, اتنی چیزیں ہیں, ٹیکنیکل چیزیں آپ کو پتا ہوں گی. تو ایک کھلاڑی کے لیے صحافت میں جانا بھی ایک اعزاز کی بات ہے, اور جب تک ایک صحافی جو ہے وہ پراپر طریقے سے اسپورٹس کو دیکھے گا نہیں, اسپورٹس کو سمجھے گا نہیں, تو اس کو اس طرح سے صحافت آئے گی نہیں. آج کل ہمارے جرنلسٹ بھی جس کے پاس ایک کیمرے والا فون ہے اور ایک اچھا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اب خود کو صحافی کہنے لگ پڑتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ولاگس کرتے ہیں, تجزیے دیتے ہیں اپنے, لیکن جو ایک کرکٹ ایکسپرٹ کا تجزیہ ہے, جو ایک اسپورٹس جرنلسٹ کا تجزیہ ہے, وہ ان سے بہت مختلف ہوتا ہے. یہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا.
4: بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ اسپورٹ جرنلزم کے کیا مسائل ہیں. یہاں پہ وقت ہوئے ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کا, سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
3: جدو راتی چن نکل دائے, جدو کالے پتل چھاندے نے اس بے رنگے جی دنیا وچ, کچھ لوگ نکل

0: बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। हमने बात की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे, उनके मसाइल पर, वुमेन रिप्रेजेंटेशन पर। अब अगर हम बात करें कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त जर्नलिज्म की दुनिया में आ गए हैं और अब वो आके हर मैच के बाद अपना तबसरा दे रहे होते हैं, तो अगर आप एक हल्का सा कमेंट कर दें कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है।
1: बिल्कुल, आपने कहा कि खिलाड़ी आ गए हैं जो कि सोशल मीडिया पे बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया ही जो है वो फसाद की जड़ है। मैं इस चीज़ पे जो है वो राय रखता हूँ ये वाली कि सोशल मीडिया ही फसाद की जड़ है। वो इसलिए भी शायद ये मेरे खिलाफ भी जाए कि आज की दौर में आप डिजिटल मीडिया के स्टूडेंट्स हो के तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैठ के और डिजिटल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप जब सोशल मीडिया का यूज़ गलत करेंगे ना तो बहुत नुकसान देगा, और हमारी 80% आवाम उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं बैठा हूँ, मैं टीवी पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी है कि मैंने ये अल्फाज कहना है, ये नहीं कहना, ये मेरे टीवी पे जाएगा, ये मेरी आवाम को जाना चाहिए और ये नहीं जाना चाहिए। क्या मैं इस खिलाड़ी पे तबसरा कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के मैं जब तक तनकीद नहीं करूंगा, जब तक मैं गालम गलोच नहीं करूंगा, मुझे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। हमारे बहुत से साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो इस रुझान की तरफ आ चुके हैं कि वो सोशल मीडिया चैनल्स बनाते हैं, चैनल्स बनाने के बाद वो बकायदा उसके ऊपर जो है वो तबसरे करते हैं कि पाकिस्तान की इस खिलाड़ी को ये है, इस खिलाड़ी को ये, और गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये लोग चैनल पे बैठे हों तो शायद ये लोग उस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें। हमने बहुत से खिलाड़ी ऐसे देखे हैं जो टीवी पे बैठ के तो बड़ी जिम्मेदाराना बात करते हैं, जब वो सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वो जिम्मेदाराना बात उनकी खत्म हो जाती है, वो व्यूअरशिप के लिए बात करने लग पड़ते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो टीवी पे बैठ के तो बड़े महज़ब तरीके से खिलाड़ियों को बैक भी कर रहे होते हैं, तनकीद भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनके YouTube चैनल पे जाएंगे तो उनके थंबनेल से आपको ये तासुर जा रहा होता है कि इसने तो इस वीडियो में उड़ा दिया इस खिलाड़ी को। तो हमारा जो सोशल मीडिया है उसका हमारे खिलाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब अगर एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और उसके ऊपर बकायदा ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो ट्रेंड्स हम जैसे सहाफ़ियों को मिला के ही चलाए जाते हैं, वो सहाफ़ी ही ट्रेंड्स चलाते हैं क्योंकि उनकी ट्विटर पे रीच होती है, तो वो सहाफ़ी बैठ के जो है वो ट्विटर ट्रेंड सेट करते हैं और अपनी मर्जी के खिलाड़ी को मॉडिफाई कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, आपको हर खिलाड़ी की बात करनी चाहिए। तो जब सोशल मीडिया अफेक्ट कर रहा है हमारे खिलाड़ियों को, इवन कि हमारी टीम सिलेक्शंस को भी इफेक्ट करता है। हम अब बहुत सी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छुपाता है, वो नहीं बताता मीडिया को कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाएंगी, खिलाड़ियों पे गलत चीज़ का तासुर जाएगा। इसकी लेटेस्ट जो अभी मिसाल वो ये है कि एक वाकया हुआ है इंग्लैंड में, और उस वाक्य के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तबसरा नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वाक्य पे ये कहा कि हम उस वाक्य को लीगल असिस्टेंस देंगे अपने प्लेयर को, उसके बाद वो जो भी अदालत का फैसला होगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो की है और अपने सोशल मीडिया को तमाशा बनाने नहीं दिया। सोशल मीडिया पे जब तमाशा चीज का बनता है तो वो खिलाड़ी के लिए भी नुकसानदेह होता है और एक इंस्टीट्यूट के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का एक रोल तो है हमारी लाइफ के ऊपर, उसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें और पॉजिटिव ही रखें तो ये बहुत जो है वो इफेक्टिव भी होगा और हमारे सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भी फायदेमंद होगा कि वो पॉजिटिव तरीके से उसको यूज करेंगे। क्योंकि व्यूअरशिप जो है, हमने शायद अनफॉर्चुनेटली अपनी व्यूअरशिप को ये आदत डाल दी है कि हम तनकीद करेंगे तो आप हमें देखें, अगर हम तनकीद नहीं कर रहे तो आप हमें ना देखें। हमें क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट देना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ कॉन्टेंट नहीं देना चाहिए।
0: और इसी में फैन पेजेस को कैसे देखते हैं आप?
1: बिल्कुल, आपने फैन पेजेस की भी बात की है। अब तो फैन पेजेस जो है वो बहुत से फैंस बना लेते हैं और वह जुनून की हद तक होते हैं। तो वो बहुत से लोग जो होते हैं, वो क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, वो खुद भी फीड कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उन फैन पेजेस को, उनके भाई बहनों दोस्तों ने बनाए होते हैं, फैमिली ने बनाए होते हैं, तो वो उनको फीड भी कर रहे होते हैं। जो खिलाड़ी खुद नहीं ना बात करना चाहता, वो उनका फैन पेज बात कर देता है और उसके बाद वो बात जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बन जाती है और वो बात निकलते निकलते पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। तो मेरे ख्याल से फैन पेजेस को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और फैन पेजेस को क्रिकेटिंग नॉलेज पे बात करनी चाहिए, क्रिकेट सेंस पे बात करनी चाहिए, ना कि क्रिकेटर्स चाम के ऊपर बात करनी चाहिए। तो जब तक आप क्रिकेटर्स के चाम में मुब्तला होंगे तो ना आप सहाफ़ी हैं, ना आप कोई एंकर पर्सन हैं, ना आप कोई ऐसी सोर्स हैं जिसपे के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि आप हमेशा बात करेंगे तो उस खिलाड़ी की फेवर में बात करेंगे, आप उसके फैन बन के बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक सहाफ़ी न्यूट्रल होता है और उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए, ना कि किसी प्लेयर की साइड लेनी चाहिए, किसी प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए, जो देख रहा है उसके ऊपर बात करते हैं।
0: हमने बात तो की थी प्रॉब्लम्स के बारे में, अगर मैं आपसे लास्ट पे कमेंट लेना चाहूँ कि आप क्या देखते हैं कि इसका हल क्या है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का और जो प्रॉब्लम्स हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में।
1: बिल्कुल, वुमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और इसके लिए आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा स्पोर्ट्स में, जो कि हमारी बहुत सी खवातीन में स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं है, प्लेयर्स का चार्म जरूर मौजूद है। जब तक आप स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं लेंगे आप उस फील्ड में नहीं आ सकते। ये इसका एक प्रॉपर, आप देखें कि प्रॉपर सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि पाकिस्तान में समझा जाता है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत कम लोग जाते हैं। खैर, अब तो जर्नलिज्म भी बहुत से लोग अवॉइड कर रहे हैं जर्नलिज्म में जाने के भी, और बहुत से लोग इस सब्जेक्ट को चूज ही नहीं करते कि नहीं जर्नलिज्म तो एक लिमिटेड सोर्स है। तो मेरे ख्याल से जर्नलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, जर्नलिज्म में जाना चाहिए और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में खास तौर पे जाना चाहिए। ये मेरी नज़र में ये सबसे सेफ बीट है खवातीन के लिए, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और वैसे ही एक एनर्जेटिक है, तो हमें स्पोर्ट्स की तरफ इन खवातीन को लाना चाहिए और खवातीन को स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में फोकस करवाना चाहिए, ना कि दीगर बीट्स में जाएँ या इन हाउस काम करें। आए, आके काम करें। बहुत सी नौजवान खवातीन हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाह रही हैं और वो काम भी कर रही हैं और हमसे शायद अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए और उनका माइंड जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ होना चाहिए। हमारी एक अनफॉर्चुनेटली बात ये भी है कि हम जब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जाते हैं खवातीन खासकर, तो उनके माइंड सेट में आ जाता है कि मैं इस प्लेयर की मीडिया मैनेजर लग जाऊँ, इस टीम की मीडिया मैनेजर लग जाऊँ। तो वो मीडिया मैनेजरशिप से निकल के स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनना चाहिए, ना कि आपको मीडिया मैनेजर और उस प्लेयर की प्रोफाइलिंग में लग जाना चाहिए, आपको उस फील्ड के साथ खेलना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच फिलीद, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया प्रॉब्लम्स को भी और उनके हल को भी, एंड यू आर डूइंग टू गुड, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो, उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ नए मौजू पर गुफ्तगू होगी। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। खुदा हाफिज।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: And now, you are gonna listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुबारे बच्चे हो गया चर्ख सितमगर का कलेजा ठंडा मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं लेकिन बाज औकात हालात रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है
2: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता इसलिए किराया हम किराया दे नहीं सकते इसका किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं हमारी मम्मी कहती है 1,000 रुपये चले जाओ उधर काम कर लो अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम करके आमदनी चला लेते हैं जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी पेट जाते हैं जो भी होते हैं हम फिर भी छोड़ देते हैं हम कहते हैं अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें कोई की जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये कोई 20 देते कोई देता नहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते कोई देते नहीं इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी घर का सरकट चल जाता है
1: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं जिंदगी वक्त हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता
3: मेरे अब्बू फोत हो गया मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ इस तरह मुझे रोज के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं जिसमें फिर मुझे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है वो मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है
1: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो ज़हनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते लेकिन खानदान चलाने वाले गुर्बत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पांव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है
4: मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया अब छुट्टियाँ हुई हैं मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल से पढ़ने के बाद आता था अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया उस्ताद जी कहते हैं कि अब मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ
1: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्ने सलूक करे इनसे इनकी इस्तेतात और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुर अज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
5: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
1: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफराते जर भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालिदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
6: वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इफलास की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, तो उसमें फिर हमारा शुमार कतार कहाँ, फिर हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जों पे चलने वाला।
1: कौन सी ममता है जो अपने जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने वाले औजार थमाए मगर पेट की भूख और माशरे का तल्ख रवैया इंसान को इस नहज पर ला खड़ा कर देता है कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान होने के नाते हम इस बात के कैसे हामी हो सकते हैं कि फूल से मासूम बच्चों के हाथ काम करते हुए आबलों से भर जाएं? मगर किसी गरीब का गंदगी के ढेर से निवाला तलाश करना भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है।
7: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सर आबिद बशीर साहब से IoT के बारे में, अपनी गुफ्तगु का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, IoT डिवाइसेस की हम बात कर रहे थे जाने से पहले, तो सर इनको हम टेक्निकली डिफरेंट कैटेगरीज में भी ऐड कर सकते हैं?
2: बिल्कुल, इनकी टेक्निकल डिवीजन होती है, कैटेगराइज किया जाता है इनको दो बेसिक कैटेगरीज में। नंबर वन इज कॉल्ड जनरल डिवाइसेस एंड द अदर इज कॉल्ड सेंसिंग डिवाइसेस। वो इनकी नेचर ऑफ यूसेज और नेचर ऑफ ऑपरेशन के हवाले से डिवाइड किया जाता है।
1: सर, आपने जैसे अभी बताया कि इनको दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, वन इज जनरल डिवाइसेस एंड अदर वन इज सेंसिंग डिवाइसेस, तो सर इनका एक्चुअली IoT नेटवर्क में क्या रोल है और इनसे रिलेटेड कोई आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी अगर बताएं तो हमारे लिसनर्स के लिए आसानी होगी उसको समझने में।
2: जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं जनरल डिवाइसेस से स्टार्ट करूंगा। जनरल डिवाइसेस में हमारे सामने अभी मैंने जैसे जिक्र किया आपके पास CCTV कैमराज हैं, होम अप्लायंसेज में आपके पास एयर कंडीशनर्स हैं, तो वो इंटरनेट पे कनेक्ट होने चाहिए। अब ये डिवाइसेस क्यों कनेक्ट होनी चाहिए? क्योंकि आप इनको ऑपरेट करना चाहते हैं अपने मोबाइल्स के साथ, तो अगर इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ये कनेक्ट नहीं होंगे। अब इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए इनको कोई वायरलेस या वायर्ड लिंक की जरूरत होती है। हमारे घरों में आमतौर पर राउटर लगा होता है जो हमें इंटरनेट के सिग्नल्स दे रहा होता है, और वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिवाइस अगर इंटरनेट इनेबल्ड है तो वो अटैच हो जाएगी। अब ये जनरल डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या है कि ये जो अप्लायंसेज जिनके मैंने जिक्र किए हैं ये जनरल डिवाइसेज हैं। जैसे मेरा एयर कंडीशन है, ये इंटरनेट पे कनेक्ट है, ये जनरल डिवाइस है। इसके अलावा जो मेरा CCTV कैमरा है, ये इंटरनेट पे कनेक्टेड है, वो जनरल डिवाइस है थ्रू एनी वायरलेस लिंक और वायर्ड लिंक। ठीक है, अब जब ये कनेक्ट हो गए हैं, अब इनको क्या मकसद क्या था कनेक्ट करवाने का, ताकि इनको ऑपरेटेबल किया जा सके ओवर द इंटरनेट थ्रू माय कंप्यूटिंग डिवाइस, जो मेरे पास मोबाइल घर मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, एनी पॉइंट लोकेशन या किसी भी जगह पे मैं बैठा हूँ, अवेलेबल हूँ। लेकिन जो फेंसिंग डिवाइसेस होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, वो सेंसर और म्यूटेटर्स का काम करती हैं। बेसिकली उन्होंने क्या करना होता है, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एनवायरनमेंट का पार्ट ही, लेकिन वो बेसिकली क्या कर रही हैं, वो ऑपरेट नहीं हो रही, वो सेंस कर रही हैं कुछ चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्सेप्ट है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सुबह उठते ही पर्दा पीछे करूँ तो मेरी अलार्म क्लॉक जो है वो चल पड़े। तो बेसिकली जो मेरी अलार्म क्लॉक है वो भी एक डिवाइस है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट है, लेकिन वो मेरी सूरज की रोशनी को सेंस करेगी, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑफ या टास्क को सेंस करेगी, तो वो बेसिकली अपना काम करेगी। तो है वो भी एक IoT की डिवाइस, लेकिन वो सेंसिंग डिवाइस की कैटेगरी में आएगी।
1: सर, आपने अभी बताया कि वायर नेटवर्क की बात की और वायरलेस नेटवर्क की बात की, इन दोनों में फर्क क्या होता है?
2: ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का और इंटरनेट पे अवेलेबिलिटी, क्योंकि आजकल हर चीज इंटरनेट पे चल रही है, इंटरनेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग अपॉन ओवर द इंटरनेट। तो उसमें आपने जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको एक इंटरफेस चाहिए होता है, जिसे हम लिंक भी कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स में चैनल भी कहते हैं, मीडियम भी कहते हैं, जो दो या मोर देन टू डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। तो वो लिंक बेसिकली वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे आप अपने घर की डिवाइस को ऑपरेट करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी में बैठ के, या यूनिवर्सिटी के किसी डिवाइस को ऑपरेट करना चाह रहे हैं घर में बैठ के, तो आपका डिस्टेंस जो कवरेज एरिया है वो काफी लार्ज है। तो इस केस में जो आपका आइडियल लिंक बनता है वो वायरलेस बनता है, जो आपको मोबाइल डाटा के जरिए सिग्नल्स मिल रहे हैं, वायरलेस लिंक की एग्जांपल्स है। और अगर आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, आपने अगर एक ब्लू केबल होती है जिसे हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, उसको अगर आपने अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो दैट इज बेसिकली अ लिंक जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन वो वायर्ड लिंक है।
1: अच्छा सर, अभी तक तो हम सिर्फ अपने होम अप्लायंसेस और घर के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, सर बिजनेस के लिए IoT किस तरह फायदेमंद साबित हो सकता है?
2: बिजनेस के ऊपर बात करने से पहले मैं पहले आऊंगा एट द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच की बात करें तो रिसर्च में इसका क्या काम हो रहा है? रिसर्च में अगर हम देखेंगे IoT के ऊपर डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मर्ज किया जा रहा है। ऐसी रिसर्च भी हो रही है जिसमें IoT विद ब्लॉकचेन एंड मशीन लर्निंग को एम्बेड किया जा रहा है। तो ऐसी अप्लायंसेज यूज की जा रही हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी इन्वॉल्व करें और उसके अलावा वो मशीन लर्निंग ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व करें। बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच को अगर हम देखें तो वहां पे बेसिकली अगेन होम ऑटोमेशन या ऑफिस ऑटोमेशन या आपकी जो टास्क है रोजमर्रा की उनकी ऑटोमेशन ओवर द इंटरनेट, वो इसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा डेफिनेटली आगे जाके, जिस पे हम बात करना पसंद करेंगे, दैट इज बेसिकली कि आप जब इतना कुछ ऑटोमेट कर रहे हैं तो उसको ह्यूमन कंट्रोल में रखना और जेन्युइन कंट्रोल में रखना, फेक आइडेंटिटी को जो है वो मिसयूज होने से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी प्राइवेसी मेजर्स में आ जाते हैं।
1: सर, अगर आपने अभी खुद ही इसका जिक्र छेड़ दिया तो हमारे सुनने वालों को बताइए कि सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं, सिक्योरिटी और प्राइवेसी अटैक्स का क्या क्या इशू हो सकता है IoT बेस्ड नेटवर्क्स पे।
2: देखिए, जो चीज़ इंटरनेट पे चली गई है उसको प्राइवेसी कंसर्न का इशू फेस करना पड़ सकता है
1: जी,
2: बिकॉज ऑफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द यूजर। आप एक मोबाइल ऐप में, मोबाइल ऐप इज नॉट एन एग्जांपल, आइडियल एग्जांपल ऑफ IoT, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ती है और यूजर नेम पासवर्ड के बाद फिर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको OTP दिया जाता है जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना इन शॉर्ट होता है। तो इसी तरह जब आप अपना होम अप्लायंस को इंटरनेट पर लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अलावा कोई और ऑपरेट ना कर सके। अगर आपके अलावा कोई और ऑपरेट करना भी चाह रहा है तो उसको क्रेडेंशियल्स देने चाहिए। तो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम, मैं जेनेरिक लेवल पे बात करूंगा क्योंकि हमारी ऑडियंस इतनी टेक्निकल नहीं है
1: जी।
2: जो उसकी डीप डाउन द लर्निंग में जाए तो उसमें आपको क्रेडेंशियल्स में यूजर नेम पासवर्ड की, आप अगर ऑपरेट भी करना चाह रहे हैं किसी के घर की कोई अप्लायंस को या किसी भी और चीज को जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एनवायरमेंट का पार्ट है, तो उसमें आप उसको वेरीफाई करें तो वो यूजर नेम पासवर्ड है, क्रेडेंशियल्स हैं, देन डेफिनेटली अगर यूजर नेम पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अदर देन दैट फिर आप क्या करेंगे, फिर उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं जिसमें हम वन टाइम पासवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स कंडक्ट करते हैं। ओवरऑल मेन मकसद क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, प्राइवेसी को मेंटेन करना और अनऑथराइज्ड एक्सेस को मेंटेन करना
1: जी।
2: कि आपके अलावा कोई और जो है वो अगर किसी भी एनवायरमेंट है IoT का उसमें एड अप होके आपकी फेक आइडेंटिटी को यूज ना करे या आपकी क्रेडेंशियल्स को मिस यूज ना करे। तो सिक्योरिटी अटैक्स
1: IoT में मिस यूज किस तरह किया जा सकता है चीजों को,
2: ब्रीच ऑफ द सिक्योरिटी के जरिए। अगर आपकी अप्लायंस, मोबाइल आपका चोरी हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सी एग्जाम्पल्स है
1: जी।
2: तो अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया और आप उसके बाद आपका पैटर्न लॉक भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, अब आपकी जो मोबाइल ऐप है जो आपको एक्सेस दे रही है आपके CCTV कैमरास की
1: जी।
2: तो वो मोबाइल ऐप अगर यूजर नेम पासवर्ड इनेबल्ड नहीं है तो ऑब्वियसली वो फिर आपके घर की अप्लायंस को व्यू भी कर सकता है
1: जी।
2: आपके घर के अप्लायंस के जरिए लाइक CCTV कैमरा उसको व्यू भी कर सकता है और उसको यूज भी कर सकता है। तो ये वन एग्जांपल है बहुत बेसिक। तो अगेन सिक्योरिटी मेजर्स जेनेरिक लेवल पे अगेन वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी के ऊपर ही हम काम करते हैं थ्रू क्रेडेंशियल्स, लेकिन फिर आगे इसमें मजीद कॉन्सेप्ट्स आते हैं लाइक पैसिव अटैकर्स और एक्टिव अटैकर्स के। वो बेसिकली क्या होता है कि लाइक कुछ अटैकर्स होते हैं जो आपके डाटा को मैनिपुलेट करते हैं
1: जी।
2: कुछ ऐसे भी अटैकर्स होते हैं जो आपके डाटा को मैनिपुलेट करने के अलावा वो बेसिकली सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर कोई ऐसा अटैकर है तो उनको हमने प्रिवेंट कैसे करना है, अगेन वी हैव टू मेक सम सिक्योरिटी मेजर्स, और सिक्योरिटी मेजर्स के लिए आपको लाइक क्रेडेंशियल्स और जो आपके लाइक यूजर नेम पासवर्ड्स हैं, OTPs हैं, इनको आप यूज करते हैं और प्रॉपर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की डिटेल्स में आ जाती हैं चीज़ें जो हम यहाँ पे फिलहाल बात नहीं कर सकते, वो क्योंकि डेफिनेटली एक एडवांस कॉन्सेप्ट है।
1: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया. ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे IoT के बारे में, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं. इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मजीद जानते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं सर आबिद बशीर. जी सर, अगर हम रिसर्च के हवाले से बात करें तो IoT में मजीद क्या काम हो सकता है?
2: रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन जो थ्रेट है हमेशा वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट ही रहता है. सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एस्पेक्ट ऑफ द IoT बेसिकली. तो यहाँ पे अब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के हवाले से कई एल्गोरिथम्स हैं, कई अप्रोचेज हैं जो ऑलरेडी यूज हो रही हैं इन द मार्केट. और जो मैंने एक पॉइंट पहले भी डिस्कस किया कि हमें ये मेक श्योर करना है कि जो इंडिविजुअल आपकी IoT की सर्विस को यूज करना चाह रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, कोई आपकी आइडेंटिटी को मिस यूज तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए वी हैव टू डिनाय द इररिलेवेंट यूज ऑफ सर्विस. यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस. तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं, इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और बहुत ज्यादा काम हो रहा है. तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट के अंदर डिनायल ऑफ सर्विस जो है वो बेसिकली इसके ऊपर भी बच्चे काम कर सकते हैं. और डिनायल ऑफ सर्विस दो किस्म का होता है. एक बंदा जो जनमन है और वो अपनी सर्विस को एक्सेस करना चाह रहा है IoT के एनवायरनमेंट में, तो उसको डिनाई कर दिया जाए. इसका मतलब किसी ने आपके नेटवर्क को हैक कर लिया अनऑथराइज्ड तरीके से. और दूसरा ये है कि आप उस बंदे को डिनायल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें, डिनाई करें सर्विस को एक्सेस करने के लिए डिनायल ऑफ सर्विस के जरिए जो ऑथराइज्ड नहीं है. तो इसके लिए ऑलरेडी कई एल्गोरिथम्स हैं. तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि वो ऑलरेडी अगर एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं, सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स या मैकेनिज्म्स, तो हम और मजीद क्या रिसर्च करें. वी हैव टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि
1: सर इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं नेटवर्क्स को, इस बारे में भी काम
2: नेटवर्क
1: हो सकते
2: जैसे
1: हैं?
2: जैसे आपका नेटवर्क का कवरेज एरिया एक्सपेंड होगा, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ेंगे, यूजर्स इन्वॉल्व होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ेंगे. तो सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स जो हैं या सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, उनको वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट उसमें रिसर्च के जरिए ही लाई जा सकती है. तो रिसर्चर्स के लिए ये मैं कहूँगा कि वो उसको आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या लूप होल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए, और अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो वो उनको आइडेंटिफाई करें और उनको मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को या प्राइवेसी मैकेनिज्म्स को जो है वो इंश्योर करने के लिए इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके. ताकि क्योंकि दुनिया कल को बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रही है और हर कोई होम ऑटोमेशन या ऑटोमेटिकली वो क्या चाहता है कि जी मैं इंटरनेट के जरिए हर काम अपना परफॉर्म कर सकूँ, तो इन द एंड उसके लिए क्या है कि ठीक है आप फैसिलिटी तो दे रहे हैं मगर आपको सिक्योर और प्राइवेट या सेफ एनवायरनमेंट भी देना है. तो दैट इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है.
1: जी सर, अगर IoT के फ्यूचर के बारे में हम बात करें तो इस पे मजीद काम हो सकता है, ये क्या स्कोप आपको लगता है इसका?
2: इस पे काम पहले भी हो रहा था, लेकिन इन द लास्ट 5 to 10 years अगर हम रिसर्च पेपर्स को चेक करें तो उसमें बहुत ज्यादा इसका जिक्र भी बढ़ा है और इस्तेमाल भी बढ़ा है.
1: जी.
2: लेकिन वो क्यों बढ़ा है? बिकॉज अगेन इंटरनेट की दुनिया बहुत जो है वो रैपिड हो गई है, स्पीड अप हो गई है, और अब हम 4G से 5G में जा रहे हैं. 6G, 7G पे भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज रिसर्च कंडक्ट कर रही हैं. तो अगेन जब आप इस लेवल पे चले जाते हैं तो फिर अगेन इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट है और ऑटोमेशन का एक कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली फ्यूचर रिसर्च जो है या फ्यूचर ग्रोथ जो है इसकी बहुत फास्ट भी है और बहुत ब्राइट भी है. तो नेक्स्ट मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले कम अज़ कम 5 to 10 years जो हैं वो IoT में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स होने के चांसेस हैं. और खाली IoT को अगर हम सेपरेटली देखें तो वो एक इंडिविजुअल चीज़ है. जब हम IoT का इस्तेमाल मर्ज करते हैं विद अदर टेक्नोलॉजी जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और इसके अलावा आपकी जो बाकी कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अगर हम ब्लेंड कर दें, मर्ज कर दें, तो फिर एक नया हाइब्रिड मॉडल बन जाता है. और वो जो हाइब्रिड मॉडल है वो एक नया कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर सिक्योरिटी प्राइवेसी इश्यूज भी नए हैं. तो फिर उस केस में जो है वो फिर डोमेन या स्कोप और बढ़ जाता है. तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर नई एडवांसमेंट्स होने के बहुत चांसेस हैं अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें IoT के साथ साथ बाकी टेक्नोलॉजीज जो लेटेस्ट हैं, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, उनका

0: करोगे?
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
2: खबरदार, छूना मना है।
3: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 EUCPK के दुनिया और मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त सुमेर सही अपने सभी सुनने वालों को अपने सभी चाहने वालों को और अपनी प्यारे से सामीन को तहे दिल से करती हूँ जनाब खुश आमदेद जी आयानु। इस शो में हम बात करते हैं मौसीकी की, हम सुनते हैं मौसीकी, हम सुनते हैं ऐसी मौसीकी जो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, लेकिन पता है क्या, कुछ चीज़ें हमेशा याद रखने के लिए होती हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम आपकी यादों को थोड़ा सा, आप यूँ कह लीजिए कि आपकी यादों को थोड़ा रोशन करते हैं, एक नई बुनियाद देते हैं, एक तसलसल बनाते हैं ताकि आप सुन सकें ऐसी मौसीकी और आपको पता चले कि हाँ ये भी है। क्योंकि बाज़ुकात जैसे कि ज़माने आगे बढ़ते जाते हैं और ज़माने की तेज़ रफ्तारी के साथ हम अपनी बहुत सी प्यारी चीज़ों को पीछे छोड़ाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त की धूल में ना ही मैली होती हैं ना ही उन पे गर्द आती है, वो हमेशा पहले दिन की तरह सुरखुरु रहती हैं। तो जनाब आज भी हम ऐसी मौसीकी सुनेंगे, आज हम थोड़ी सी बात फैज़ अहमद फैज़ पे भी करेंगे और साथ साथ जी बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे सामी आज हम बात करेंगे आपकी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी जो है वो ऐसे ऐसे हिचको ले लेती है। अब हिचको ले लेती है तो पता है क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें कभी इधर जा रही होती हैं कभी उधर जा रही होती हैं, समझ नहीं आ रहा होता कि जनाब करें क्या, किस सिमत को जाए, कहाँ को है मंजिल, कहाँ को जा रहा है राही। चले जनाब ये बातें तो हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं कि फौरन से बेशतर अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं आज की पहली गजल से। और पहली गजल मेरे दिल के बहुत करीब है, जब आपको सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे दिल के करीब क्यों है। फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई ये खूबसूरत सी गजल आप सभी के नाम।

बोल के लब आजाद है तेरे जी, बिल्कुल जनाब, हम सभी के लब आजाद है। हम कह सकते हैं जो हमारे दिल में है, हम बोल सकते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लबों को सिया नहीं गया, हमारे लबों पे ताले नहीं पड़े। यही तो बात थी फैज़ अहमद फैज़ की, उनमें यह खासियत थी कि उनकी शायरी एक वलवला, जोश खरोश लाती है, एंथुजियाज़म, जिसे आप कहते हो एंथुजियाज़म, वो डिवेलप होता है। आप चाहते हो कि हाँ बस कुछ कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि बस जो दिल में है वो कर जाओ। अच्छा मुझे आप बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ जब आपने बोलना चाहा और आप बोल ना पाए? कितनी बार ऐसा हुआ जब आपने बोल लिया लेकिन आपको सुना ना गया? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके बोलने को यूँ कह लीजिए जरा सी भी इम्पोर्टेंस नहीं देगी, और आपको कहा गया कि नहीं तुम तो रहने ही दो? होता है ना? हाँ अक्सर होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। और पता है क्या, ये जो बार बार हमें इस चीज का एहसास दिलाया जाता है कि नहीं यू आर नॉट एबल टू डू दिस, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम ये कर सको, तुम ये कह सको, तो पता है वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि ताकि हम अपने अंदर के उस इंसान को जगाएं जिसे हमने कहीं सुला दिया होता है। सच्चाई कड़वी होती है, कड़वाहट होती है उसमें, और यही तो सच्चाई का शेवा है, यही तो है सच्चाई का हुस्न जनाब। इसलिए डरे मत, कह दीजिए जो दिल में है, कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। अरे बोलिए, सब सुनेंगे, अगर नहीं सुनते तो अपनी बात में, अपने कहने में वो कुव्वत लाओ, वो चीज़ लाओ कि सब कह उठें कि अरे क्या कमाल की बात की है, अरे वाह भाई वाह, बात करनी हो तो ऐसे करनी हो। जैसे ऐसा होता है ना कि हम अगर किसी से बात करना चाहें तो हम उसकी तवज्जो अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो हमारी तरफ माइल हो जाए, हमें सुनने लग पड़े। जैसे कि आप यूँ कह लीजिए कि आप एक महफिल में बैठे हैं। अच्छा चलें एक और बात भी कर देती हूँ मैं आपसे। इश्फाक अहमद साहब कहते हैं कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हो और आपको एक बात याद आ गई हो, और वो अचानक से आपको कोई बात याद आई और आपने कहा है कि इस इंसान ने फलां वक्त में फलां बात कही थी। अच्छा अब पता मसला क्या है? अब मसला ये है कि वो जो इंसान बैठा हुआ है उसने जो बात कही थी ना, वो इस तरह की बात है कि अगर आप उस महफिल में वो बात कह दोगे तो पहली बात उसकी दिलाजारी होगी, और दूसरी बात उसकी इज्जत उस महफिल में घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो पता है क्या करें? आपको पता है? चले मैं जानती हूँ कि आपको पता है, लेकिन फिर भी बताती चलो। इश्फाक अहमद साहब ने कहा कि तब अपनी उस दलील को, तब अपनी उस बात को रोक लो और उस इंसान को बचा लो। अरे देखा, कहते हैं कि बातों से बातें निकलती हैं, यहाँ बातों से बात निकल आई ना। यानी किसी इंसान की इज्जत करना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। हम जितनी इज्जत दूसरों को देंगे और जितनी दूसरों की इज्जत का ख्याल रखेंगे, जितना दूसरों की इज्जत का ख्याल रखेंगे उतना ही हमारे हिस्से में वही चीज़ें आएंगी। कहते हैं ना, जो चीज़ें दोगे वही वापस आएंगी, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो हकारत हो। तो ऐसा कहते हैं कि अपनी अगली गज़ल सुनते हैं और इसके बाद वापस आके आपसे
बहुत सी मजीद बातें करते हैं। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। जी बिल्कुल, फैज़ अहमद फैज़ की हम ये खूबसूरत नज़्म सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिलों को ये छू सी गई होगी, आपके तारों को, यानी आपके दिलों के तारों को, आपके दिलों के सुरों को ये बजा सी गई होगी। जी जनाब, यही तो बात है इसकी। अरे मरहम बन के आती है, ये एक ऐसी दुनिया है, जादू की दुनिया, ले जाती है हमें कहाँ से कहाँ, पता ही नहीं चलता। अच्छा चलो एक बात करते हैं, मैं आपको कुछ बताती हूँ। कहते हैं एहसास एक दौलत है। एहसास क्या है? क्या एहसास करना सिर्फ महसूस करने का नाम है? क्या एहसास जो है वो हसास तबीयत का नाम है, हसासियत का नाम है? क्या है ये हसास होना, ये एहसास क्या है, फीलिंग्स क्या होती हैं, बताइए ना। चलिए मैं मुश्किल आसान किए देती हूँ। ये जो एहसास होता है ना, ये एक ऐसी दौलत है जो गैरों को अपना कर देती है। ये जो एहसास है ना, पता है ये क्या है? ये वो है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है। एहसास, अरे पता है एहसास क्या है? एहसास वो है जिससे हम किसी का दिल नहीं तोड़ते। एहसास वो है जब हम किसी को जानते भी नहीं होते, लेकिन हम उसकी मदद कर देते हैं। ये सब एहसास ही तो है। और अगर एहसास हो ना, तो बहुत से रिश्ते बन जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, मोहब्बतें आ जाती हैं, खुशियाँ आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं, लोग अपने हो जाते हैं, अपने दिल के बहुत करीब। हमारा दिल जो है ना, एहसास का शुक्र गुजार है, या आप यूँ कह लीजिए दिल का सबसे हसीन साथी एहसास होता है, क्योंकि इनका ताल्लुक बहुत मजबूत होता है। हम सभी कहते हैं कि लाहौरी जो होते हैं, यानी जो लाहौर में रहने वाले होते हैं, वो बड़े दिल वाले होते हैं। तो हम लाहौरियों की यही तो बात है जनाब, कि हम बड़े दिल वाले होते हैं। इतने बड़े दिल वाले होते हैं कि हम इस छोटे से दिल में, जिसको हम बड़ा बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समेट लेते हैं। और हाँ, अगर आप उदास बैठे हैं कमरे के किसी कोने में, आप मुझे सुन रहे हैं, या किसी भी जरिए से आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगी कि अगर किसी ने आपके एहसास की कदर नहीं की, तो दिल मत हारिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है, बहुत हसी है, बहुत खुशगवार है, इसमें रानाइयाँ हैं। अरे क्या बात करते हैं, आप यूँ कह लीजिए कि इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जैसे हम कभी कभार जो है वो ज़िंदगी का बस एक फेस देख रहे होते हैं, एक लिंक देख रहे होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। हर बात में जैसे मैंने कहा था कि बात होती है, तो फैज़ अहमद फैज़ ने भी कहा था कि बात की अंदर की बात समझने के लिए ज़ात के अंदर की ज़ात से राब्ता होना ज़रूरी है। अच्छा, बात तो मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी है, अब इसको समझाना भी पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते हैं कि पहले हम ग़ुलाम अली को सुन लेते हैं, और उनकी आवाज़ में ऐसी गज़ल
जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सुनिए और लुत्फंदोज होइए। पहली बार राजीना अखियाँ ने तकिया, एह जया तकिया कि हाय मार सुटिया।

इश्फाक अहमद साहब को मैं वाकई बहुत पढ़ती हूँ, और मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि उन्होंने जो भी बात कही वो हकीकत के बहुत करीब कही, और इनकी एक बात जो है वो मैं अक्सर औकात ही करती जाती हूँ कि जैसे आप सब देखते हो कि हमारी ज़िंदगी जो है वो कितनी अफरा तफरी में जा रही होती है, हसर बसर, हलचल, गहमा गहमी, अरे हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता देने के लिए अपनों को। और पता है, कहते हैं कि सबसे हसीन तोहफा अगर आप किसी को दे सकते हो ना, तो आपका वक्त है। अच्छा, कैसे मैं बताती हूँ ना, वो ऐसे कि अगर आपने किसी के साथ बैठ के 10 मिनट गुजार लिए, आपने अपने किसी बहुत ही प्यारे दोस्त को मिलना है और उस दोस्त को आपने मिल लिया, 1 घंटा दे दिया, 15 मिनट दे दिए, 20 मिनट दे दिए, अरे छोड़िए 5 मिनट ही बहुत है। पता है आप क्या कर रहे हो, आप एक याद बना रहे हो, एक ऐसी याद जो शायद आने वाले दिनों में एक बहुत खूबसूरत याद होगी, एक बहुत खूबसूरत एहसास होगा। तो आज आप तहिया करेंगे और मुझसे एक वादा भी करेंगे कि अगर जब भी आपको वक्त मुयस्सर हो तो उसे सिर्फ अपने तक मोहित मत रखें, उसे बांटिए, अपनों में बांटिए। क्या पता आपके बहुत सारे अपने, आपके बहुत सारे करीबी, आपके ऐसे जो दिल के बेहद करीब हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, शायद उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत हो, तो आज बैठिए ना उनके साथ, वक्त दीजिए ना। और बिल्कुल एहसास और वक्त का भी एक ताल्लुक है, पता है कैसे? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। कहते हैं कि वक्त किसी का सगा नहीं होता, और ये भी कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। अच्छा समझी मैं, लेकिन कुछ और भी तो कहते हैं। अरे ये भी तो कहते हैं कि वक्त जो है वो भागता जाता है, इतना तेज़ी से भागता है कि बाज़ औक़ात हम उसको पकड़ ही नहीं पाते। जब हम उसको पकड़ नहीं पाते तो क्या होता है, तो ये होता है कि हम पीछे रह जाते हैं और वो आगे निकल जाता है। लेकिन हम उसको पकड़ सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को वक्त के लम्हों में कैद कर सकते हैं। जैसे एक परिंदे को आप कैद कर लेते हो, उसकी आज़ादी छीन लेते हो, इसी तरह से आप वक्त को कैद कर लीजिए। कैसे मैं बताती हूँ। अच्छा आप ऐसा करो कि अपने उनसे मिलो, यानी अपने उन दोस्तों से मिलिए आज जिनसे वाकई बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई, अपने उन प्यारों से मिलिए जिनके साथ काफ़ी अरसे से आपने बैठ के बात नहीं की, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ज़रा ये कीजिए, वक्त निकालिए, उनके साथ बैठिए, आपको पता चलेगा कुछ अरसे बाद वो जो लम्हे होंगे, वो यादें होंगी, वो भूली बसरी यादें, वो जो यादों की गठरी आप अपने कंधों पे लादे होगे ना, अरे वो सहारा होगी आपका, वो वक्त कैद कर लोगे आप। तो आज कीजिए ना कैद, एहसास भी तो इसी का नाम है, क्योंकि हमें एहसास होता है तो हम किसी के लिए वक्त निकालते हैं, वरना बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे हीले बहाने कर लेते हैं हम कि हाँ मैं नहीं भाई फ्री आज, मेरे पास तो ज़रा वक्त नहीं, अरे क्या बात करते हो, मैं बिल्कुल नहीं, मेरे पास तो एक लम्हा भी नहीं। निकालिए ज़रा वक्त और हम वापस आते हैं और आपसे मज़ीद बातें करते हैं। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी ग़ज़ल।

दोस्त पे मर गया कैसे? अरे बहती हसन की आवाज हो और ऐसे अल्फाज हो तो कहने को तो बनता है कि क्या ही बात है, कमाल है, लाजवाब है, बाकमाल है। तो जनाब बाकमाल की बात आई है तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को जो हमारे साथ हैं, जिनकी समातों से हमारी आवाज़ टकरा रही है, तो मैं कहती चलूं कि आप बाकमाल हैं। पता है, जानती हूँ पता है, लेकिन मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ ताकि कुछ बात आपके जहन में बस अटक जाए और आप वो सब करना शुरू कर दो। आप बाकमाल हो क्योंकि आपका दिमाग बहुत चंजा है, गुस्सा तो आपके पास भी नहीं भटकता, अगर आता है तो आप कंट्रोल कर लेते हो। उसके अलावा आपकी जुबान बेहद मीठी है, इतनी मीठी कि ये किसी का दिल नहीं दुखाती। और पता है ये जो दिल है ना, बहुत नर्म है, ये दिल किसी का दिल नहीं दुखाता। तो आप हुए बाकमाल। तो जनाब हम अपने प्रोग्राम में तैयारी गज़ल में गज़लें भी सुनते हैं और साथ साथ हम आपसे कुछ बातें भी करते जाते हैं। तो आज जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, लाइक हम बात कर रहे थे एहसास की, हम बात कर रहे थे खुशी की, हम बात कर रहे थे कामयाबी की। अब एहसास, एक बात मैं अक्सर कहती हूँ, इश्फाक अहमद साहब ने कहा था कि हमें फातिहा लोगों के मरने पे नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि हमें तो फातिहा एहसास के मर जाने पे पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान मर जाता है तो उसका जो किरदार होता है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब ऐसा साथ मरते हैं तब इंसानियत ख़त्म हो जाती है, तब आपके पास कुछ नहीं रहता। अगर एक इंसान को तकलीफ़ है, वो सड़क पे पड़ा बिलबिला रहा है, वो दर्द से कराह रहा है, वो चीख रहा है कि मेरी मदद करो, आसपास से लोग गुजर रहे हैं, उन्हें कोई एहसास ही नहीं है, अरे वो कहते हैं कि हम क्यों करें, हम नहीं देखते, तो क्या कहेंगे आप इसको? ये एहसास ही तो है, ये एहसास की तो दौलत है, ये एहसास ही तो है कि हमें खुशी होती है। अगर हम बिल्कुल बेहस हो जाएं तो हमें खुशी का एहसास कैसे हो? अच्छा, जब हमें कामयाबी मिलती है तो हम खुश होते हैं, और खुश कैसे होते हैं? खुश भी तो एहसास होने से आता है ना। चले, कहते हैं कि कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत तो भाई उसके लिए ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन पता है क्या, मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप कामयाबी चाहते हो तो कामयाबी के बारे में सोचने लग पड़ो, एक कामयाब इंसान की तरह सोचो और सोचो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं गिरा, अगर मैं मुझे ठोकर लग गई, मुझे कोई संभालने वाला ना आया, तो अपना हौसला मैं खुद हूँ, अपनी ताकत मैं खुद हूँ, अपनी कामयाबी मैं खुद हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर औकात लोग तब नहीं आते जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, लोग तब आते हैं जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। यानी आप गिरोगे तो कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जब संभल जाओगे ना, जब वो चीज़ कर लोगे, जब वो चीज़ पा लोगे, तो बहुत सारे हाथ आ जाएंगे, बहुत सारे सहारे आ जाएंगे। वो ये पूछेंगे कि हाँ तुमने कर लिया, अरे वाह तुमने तो कर लिया, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने कैसे किया, इस दौरान तुमने कितनी तकलीफें सही। तो इसलिए कामयाब हुए, खुश रहें। और पता है हकीकी खुशी क्या होती है? हकीकी खुशी तब मिलती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश हो, जब आप दूसरों को खुश करो, जब आपकी वजह से आपके माँ बाप के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, जब आपकी वजह से कोई अनजाना हंस पड़े। खुशी के लिए कोशिश करनी पड़ती है या नहीं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कहते हैं कि नूरजहाँ की खूबसूरत सी आवाज़ सुन लेते हैं।

कदमों में तेरे जीना मरना, नूरजहाँ की खूबसूरत सी आवाज़ में खूबसूरत सा ट्रैक आप सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा। फिल जनाब, आज भी ऐसा हुआ कि वक्त तेज़ी से गुजरता गया और हम उसको कैद नहीं कर पाए। अरे ये कैद हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम इससे कुछ लम्हों को संभालने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो जाते जाते हम आपसे ये कहेंगे कि हमेशा खुश रहें, खुश रहें। और एक बात जो मैं कहती जाऊँ कि कामयाबी जब मिलती है तो तब खुशी ज़रूर होती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि खुशी में ही आपने कामयाबी ढूंढ ली हो? अजीब बात कर दी मैंने, तो बताई जाती हूँ। ज़रा सोचे कि किसी के लबों पे आपने मुस्कुराहट फैला दी, किसी को रोते रोते हंसा दिया, तो कामयाबी हुई ना। इसी तरह कामयाबियाँ समेटते रहे, अपने से दूसरों को बेहद खुश रखिए, खुशियाँ बांटते रहे, क्योंकि जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, जब मैं खुश होती हूँ, जब आप हम सभी खुश होते हैं। लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। और एक बात और, अपने लबों पे चंद लम्हों की मुस्कुराहट लाने के लिए किसी की मुस्कुराहट मत छीनिए, चाहे वो बहुत छोटी सी कीमत अदा करनी पड़े आपको उसको मुस्कुराहट की। उस मुस्कुराहट की छोटी सी भी कीमत आप अदा करनी पड़ जाए आपको, तब भी वो मत छीनिए किसी से, किसी की खुशी मत छीनिए। और खुशियाँ बांटते रहें, खुश रहें, खुश रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। त्यारे गज़ल को सुनते रहेगा, आप सुन रहे थे त्यारे गज़ल, मेज़बान सुमेर सगीर के साथ। अल्लाह हाफिज़।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड टू 90

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।